0: इस बोजान प्रोग्राम सुबुगा ही ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समय 6:55 हो रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली चले खबरों के लिए।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्धीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्ट योगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। 35 नूतनाः मंत्रिणः मंत्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः 11 लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य 9 दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या 41 यावत् वर्धिता भवति।

0: वक्ष्यति। निर्वाचनायोगेन दशराज्याणां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिकनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतद् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन

0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका ताहुरा सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge on the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with the constitutionally mandated 15% limit for the 294-member West Bengal Assembly. The notification for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states will be issued today. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will go to polls. Former Prime Minister and JDS leader H.T. Devagowda, Union Ministers and BJP leaders George Kurian and Ravneet Singh, leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge, among the members who are completing the terms this month. In Maharashtra, ruling Mahayuti Alliance has finalized the seat-sharing formula for the upcoming legislative council elections to 17 seats. Under the agreement, BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Maha Vikas Aghari had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats. Shiv Sena UBT 4 seats and Sharad Pawar led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nander seats are still underway. Today is the last day for filing nominations for the legislative council polls. Holy relics of the Arahat Sariputra and Arahat Mahamogalana were ceremonially enshrined at the Ganden Teglan Ching Monastery.

0: in Ulaanbaatar, Mongolia, on the occasion of Buddha Purnima 2026. Arhat Sariputra and Arhat Mahamoggallana are the two chief disciples of Lord Buddha. The Union Ministry of Culture stated that the relics have been brought from India for a 10-day exposition until the 10th of June. The exposition was inaugurated in the presence of Assam Governor Lakshman Prasad Acharya and the Ambassador of India to Mongolia, Atul Malhari Gotsarf. Prime Minister Narendra Modi had announced the exposition during Mongolian President Ukhnagin Khurelsukh's visit to India in October last year. In the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women wrestlers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam. Leading the charge, Diksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals with dominant victories in their respective finals. India added 3 silver medals through Nikita in the 49-kilogram, Antara in the 65-kilogram and Tania in the 69-kilogram categories. In cricket, Royal Challengers Bengaluru won the IPL title for the second consecutive year, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 155 for 8 in the stipulated 20 overs. Washington Sundar emerged as a top scorer with an innings of unbeaten 50 of 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त कीजिए प्रोग्राम पयामे सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार, तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा, तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है। नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह,
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
9: फर्जी ऑफर से सावधान।
10: RBI कहता है
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ, बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

0: आमिर, हम अभी
1: होस्टिंग और की वर्डप्रेस होस्टिंग पेश है। वेबसाइट परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए तीन विशेष सुविधाएं। एक इनहाउस सीएम तेजी से कंटेंट डिलीवर करने
0: गहरा तालुक हमारे बीच बना हुआ है, आपके और मेरे बीच बना हुआ है, हमारे और सामने के बीच बना हुआ है। और ये गहरा तालुक ही है जो इंसान के रिश्तों को इतना खूबसूरत बनाता है कि हम किसी के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो फिर अपने आप को उससे अलग समझ ही नहीं पाते, रख ही नहीं पाते। लेकिन नियत का सही इनहाउस बनाई गई वाइब और तो जो हम ये गहरे ताल्लुक की बात कर रहे हैं, हम कहे राबते की बात कर रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि ये ताल्लुक या खामोश समझ बूझ आखिर कहाँ से जन्म लेती है? एक्चुअली इसकी बुनियाद जो है वो कहीं और है, ऐसे गोशे में होती है जहाँ हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं।
2: बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, खामोशी तो उनकी भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन क्या हम इनकी उस खामोशी को समझ पा रहे हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। क्या

0: इनके अनकहे जज्बात को पढ़ रहे हैं या बस अपनी मर्जी के अल्फाज इन पर थोप रहे हैं। आपके हमारे साथ
1: जुड़ने के लिए उत्साहित। आज का जो पेरेंटिंग का सफर जरूर देखें। मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग ऐसी जैसी आप चाहते हैं। होस्टिंग एड चुनें 3-2 जहां एक छोटा सा लम्हा आने वाली पूरी जिंदगी की सम्मत तय कर देता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पेरेंटिंग का सफर है ना, पेरेंटिंग का सफर बहुत ही टफ सफर है।
0: बिल्कुल बेशक
1: मगर बजाहिर अगर हम देखते हैं तो टफ है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें ना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो क्यों ना हम आज इस पेरेंटिंग के सफर पे कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे सुनने वालों के काम आए, इवन इनफैक्ट हमारे काम आ जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने वजूद है ना, इनको संवारने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो ये पेरेंटिंग है, इस पेरेंटिंग के सफ़र को सही तरीके से समझ सकें।
0: बिल्कुल सही बात है, ये हर दौर की ज़रूरत रही है, हर दौर का तकाजा रहा है। देखिए तस्लीमा जी, सच तो यही कि दफ्तर की ये कुर्सी, ये कंसोल और ये माइक, ये तो बाद की मंजिलें हैं, मगर इससे पहले सुबह का एक पूरा मोर्चा घर की चार दीवारी में बर्पा होता है।
1: बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल। जब हम घर से निकलते हैं ना तो एक जिम्मेदारी तो ये दफ्तर है, मगर इससे बड़ी जिम्मेदारी जो है इन नन्हे फूलों को संवारना और इन्हें स्कूल के लिए तैयार करना होता है। बाकी चीज़ें होती हैं, वो जो कच्ची उम्र के ख्वाब होते हैं इनकी तरतीब में अपना सारा वक्त सर्फ हो जाता है।
1: यू आर राइट आमिर, लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि माए कितनी तंग आ जाती है इन बच्चों के पीछे।
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: माए जो भी बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, छोटे होते हैं, सब इन बच्चों के साथ फाइट करते हुए नजर आते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: जो सुबह सुबह इनको जाओ उठाने के लिए, जगाने के लिए, तो सबसे पहले हम इनके कान में जाते हैं बोलने के लिए, स्कूल जी का सुन चेयर को ड्राइवर है इस पकान, तो आप नाश्ता करो। ये इस बच्चे के जहन पर इतना नेगेटिव इफेक्ट डालता है आमिर।
0: सही बात है।
1: और वी आर नॉट सपोज टू डू दिस।
0: नहीं,
1: हम अपने छोटे से बच्चे को जब नींद से जगाने के लिए जाते हैं, सोचा सा किस खाबन हंस से किस दुनिया से, एक कच्चा जहन, एक नन्ना मुन्ना बच्चा, अगर हम उसको सबसे पहले प्रेशराइज करते हैं ना, ये उसके लिए प्रेशराइज्ड है, मतलब जब हम उसको बोलते हैं बस स्कूल चुका सुन, हम क्यों नहीं उनको प्यार से जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा प्यार का भूखा होता है। ये जब प्यार मिलता है ना उसको, एक अलग सा माहौल मिलता है, वो उसकी बहुत अच्छी सी एक नींव बना देता है, उसको इंटरनली स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना देता है। औलाद खुदा का वो खूबसूरत तरीन तोहफा है आमिर, जिसकी पहचान हमारी तरबियत से होती है।
0: सही बात है। देखिए ना तस्लीमा, जब हम बच्चों को हुक्म देते हैं कि चुप रहो, शरारत मत करो या मेरी बात मानो, तो हम दरअसल इनके इसी मुकम्मल दिमागी हिस्से से वो काम करने को कह रहे होते हैं जो अभी पूरी तरह बेदार भी नहीं हुआ होता है। डॉक्टर्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं नफ्सियात, वो वाजिया तौर पर कहते हैं कि बच्चा जब गुस्सा करता है या बात नहीं मानता है तो वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा होता है।
1: साइंटिफिक बैकग्राउंड की तरफ जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम बच्चों के साथ करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि सुबह के साथ तिमन प्रेशराइज करा, उसकी जगह हम उनको बड़ा पैम्पर कर सकते हैं अच्छे से, ताकि तुहज जो सुबह छो ना, सुबह माइंड शासन बड़ा नाजुक मरहल।
0: वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी दिमागी साख तो उतनी मजबूत नहीं होती कि इन पर प्रेशराइज, इनको प्रेशराइज किया जाए।
1: हम बच्चों को अक्सर प्रोजेक्ट समझते हैं कि अगर ये काम इस करो बच्चे गैसे ठीक, ये काम हो गया तो हमारा टास्क पूरा हो गया। असल मन छो ना, ये आख प्रोजेक्ट की, ये आख रिलेशनशिप, आख
0: ताल्लुक
1: सो ताल्लुक ऐसे पूरे पर सो बॉन्ड अख बनाउन छो। अच्छा पूरे दोहस मन तिमन सन सिर्फ काम चाहिए कत करा कि अस करो काम या तुह करवा ये काम, तुह कर्व इत पाठ, मतलब इंस्ट्रक्शन ही दिमाग, या कभी हम उनका हाल भी पूछते हैं। बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उनसे कहते हैं करने को, बल्कि बच्चे वो करते हैं आमिर जो हमें वो करता हुआ देखते हैं।
0: बिल्कुल, हमारा अमल देखते हैं।
1: लाख बार भी अगर आप बच्चे को कहोगे ना कि डोंट डू दिस डू दैट डू दिस,
0: वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहेगा।
1: नहीं, उसके दिमाग में वो जाता ही नहीं है, उसका जो सिस्टम होता है ना वो सिस्टम में वैसे फीड होता नहीं है। तो हमें इस चीज से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए कि बच्चन दिमो इस इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है। अगर वो गुस्सा करें तो उनके साथ गुस्से से पेश नहीं आना है, क्योंकि छोटा सा दिमाग, नाजुक सा दिमाग है, वो उन सब चीजों को नहीं लेता। तो कैसे लेता, कैसे करना चाहिए अपने बच्चों के साथ डील, वो हमारे माहिरीन ने हमारे साथ हमारे पास
0: बातें
1: वाजिया करके रखी है। मुझे लगता है आज उन बातों के बारे में हम जानना चाहेंगे, जानेंगे
0: और अपने सामीन के साथ कुछ
1: ताकि उनको भी एक छोटा सा हेल्प मिले अपने बच्चों के साथ डील करने का, और उनका जो ताल्लुक है वो गहरा हो सके।
0: बिल्कुल।

दिल को जरा संभालो, गम ना गले लगा लो। दिल

0: जब वो परेशान होते हैं ना, तो उनका दिमाग आपके दिमाग के सुकून को एक सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करता है।
1: देखिए देखिए तस्लीम, अगर बच्चा चीख रहा है ना और आप भी चीख पड़े तो इसके दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर आप पुरसकून रहें और इसकी आंखों में आंखें डालकर नर्मी से बात करें तो आपका सुकून बरह रास्त इसके आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम को पुरसकून कर देता है। ये साइंस कहती है, एक तहकीक है।
0: तो इस चीज़ का इस्तेमाल पेरेंट्स को करना है अपने बच्चों के साथ, जो फ्रूटफुल साबित होगा। आपका बच्चा जो है मेंटल हेल्थ उसकी बहुत अच्छी रहेगी, और आप वही सब करेंगे जो आप बच्चे से करवाना चाहते हैं। साइंस कहती है कि सेरोटोनिन और जो बॉन्डिंग है ना, जब आप बच्चे के साथ मयारी वक्त गुजारते हैं तो बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी केमिकल जो है वो
1: रिलीज
0: खारिज
1: होता
0: होता
1: है,
0: है,
1: बिल्कुल
0: जिसे मोहब्बत का हार्मोन भी कहते हैं।
1: सही बात है।
0: साइंसी फायदा इसका यह है कि यह हार्मोन बच्चे के दिमाग में खौफ को कम करता है और सीखने की सलाहियत जो है ना, लर्निंग एबिलिटीज जो होती है बच्चे में, उनको बढ़ाता है। यानी जो बच्चा जज्बाती तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, वो तालीमी लिहाज से भी दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से सीखता है।
1: सही बात है। बच्चे के दिमाग में जो है ना वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो सेल्स हैं जो ये तय करते हैं कि बच्चा दूसरों के रवैयों को देखकर क्या सीखेगा। देखिए, आप इसे जो भी सिखाएं इससे ज़्यादा वो सीखता है जो आप करते हैं, आपका अमल दोहराते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सब्र करे तो इसे सब्र पर लेक्चर देने के बजाय आपको खुद सब्र करते हुए देखना होगा। वो आपको करना होगा एज अ वालिदैन, एज अ पेरेंट। वो आपको एक साइंसी आईनी की तरह कॉपी कर रहा है, ये
0: एग्जैक्टली
1: बात
0: यही
1: याद
0: बहुत
1: रखिए।
0: बड़ी बात है कि बच्चे आप लोगों को कॉपी करते हैं, वो जो आपको देखते हैं करते हुए वही सीखते हैं जो आप उनको सिखाना चाहते हैं
1: चाहते हैं
0: वो नहीं
1: जबानी
0: सीखते हैं।
1: कलामी वो कुछ नहीं करते हैं, जो आपका रद्द अमल होता है, आपका अमल
0: तो
1: होता है, वही वो करते
0: आज से
1: हैं।
0: हमको ये तय करना होगा जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना, तो उनके सामने वैसे आप नजर
1: एक्ट
0: आओ,
1: करें, बिल्कुल।
0: वैसे खुद आप, अगर आप फोन 24 घंटे उनके सामने फोन पे रहेंगे तो वो
1: तो
0: कहाँ
1: वो क्या
0: आप उसको रोक
1: सीखेंगे,
0: सकते हैं कि फोन मत
1: मत
0: देखो।
1: चलाओ, बिल्कुल
0: बच्चे एक बादशाह मिजाज रखते हैं, वो
1: बिल्कुल।
0: कमांड एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपनी ह्यूमिलेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब बड़ा होता है इंसान तो उसको पता चलता है कि मेरी ह्यूमिलेशन क्यों हो गई,
1: क्यों
0: दिस इज
1: हो गई,
0: नॉट
1: बिल्कुल
0: ह्यूमिलेशन, ये बेसिकली मेरी तरबियत हो रही है।
1: तरबियत हो
0: बट
1: रही है,
0: बच्चे को आप ये नहीं
1: ये
0: समझा
1: इन
0: सकते
1: सब चीज़ों की
0: उसका,
1: तमीज़ नहीं होती है कि
0: नहीं
1: सही क्या है
0: आप,
1: और गलत क्या है।
0: हाँ, तो इसलिए बेहतर है कि उसके दिमाग को प्यार से भर दें,
1: मोटिवेट
0: उस
1: करें उसके
0: कोरे
1: दिमाग को।
0: कागज पे प्यार का जो पूरा जो तोहफा वो डाल दें,
1: बिल्कुल
0: एक नक्श खींचे, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो और यही चीज़ें वो आपस अब आपको वापस देता रहे।
1: और जरूर
0: और
1: आपको एक अच्छा रद्द अमल देखने को
0: हाँ,
1: मिलेगा।
0: जिसके न्यूरॉन्स में मोहब्बत जम जाती है, रह जाती है, वही बच्चा कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ वापस लौटा देता है जो आपने उसको दिया होता है। तो आप, ये हम हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो पहले
1: बिल्कुल
0: हमने खुद करना है।
1: सही
0: ये
1: बात है।
0: इसीलिए कहते हैं कि बच्चा मतलब सबसे बड़ा टीचर भी हो
1: टीचर भी
0: सकता
1: हो
0: है
1: सकता
0: अपने
1: है,
0: पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: नहीं होता है,
0: ना एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी वो आपकी गलतियां आपके सामने रख देता है और
1: सामने रख
0: आप
1: देता है।
0: स्टंट रह जाते हैं। कभी कभी आप बोल नहीं सकते कि ये मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा हूँ कि किसी बड़े प्रोफेसर के साथ बात कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल सही
0: कभी
1: बात
0: ऐसा
1: है।
0: हुआ है आपके साथ?
1: नहीं, बहुत बार हुआ है, ये बात सही है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये
1: दुरुस्त
0: यही
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, क्योंकि वो हमसे सीखता है,
1: वो
0: हमारे
1: हमसे
0: आस
1: सीखता
0: अपने
1: है, हमारे
0: आसपास
1: अमल
0: के
1: को
0: लोग।
1: देखता है,
0: तो
1: बिल्कुल
0: अपने बच्चों के साथ चीखना चिल्लाना ये
1: बंद
0: ज़रूरी
1: कर
0: नहीं है,
1: दीजिए,
0: और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब वो गुस्से में आ जाए तो ठहर जाएं, उनको ये
1: बिल्कुल।
0: एहसास करवाएं कि आप उनके साथ हैं, आप उनको सुन रहे हैं, आप उनकी परेशानी में उनका साथ दे रहे हैं। उन पे चीखेंगे चिल्लाएंगे वो आपको अपना दुश्मन समझेंगे।
1: सही बात
0: उनके दोस्त बनिए, उनको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें पोल्यूशन ना हो, किसी किस्म का
1: है,
0: पोल्यूशन ना
1: बहुत
0: हो।
1: बहुत दुरुस्त बात आपने कही, बहुत बेहतरीन बात। चलिए एक कश्मीरी नगमा यहाँ पर सुनते हैं, उसके बाद कश्मीरी खबरों के लिए न्यूज़ स्टूडियोज चलते हैं।
0: बिल्कुल आमिर।

सोमवार का दिन 1 जून 2024 सुबह के 7:55 और 30 सेकंड हुए हैं। अब के बाद आज हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले बकिया प्रोग्रामों की तफसील लिए हम हाजिर। बबला लिंदम समय मोहतरम अशोक का तहरीर करदा ये कश्मीरी ड्रामा सुनिएगा शब 9:30 पर। गीतों भरी कहानी सुनिएगा शब 10 बजे। कहानी का मौजू है ख्वाब का बाकी हिस्सा। कहानी सुनाएंगे रशीद निजामी। सेहत बदन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा 8:45 पर। आज की सुर्खियां पयामिसु प्रोग्राम में पेश होंगी ठीक 9 बजे। सुबह 9:30 पर कश्मीरी मौसीकी पेश होगी।

सूफी सदा, सूफी बुजुर्गों की जिंदगी और तालीमात से आरास्ता ये प्रोग्राम हर रोज सुबह 10 बजे आप तक पहुंचता है। आज के प्रोग्राम में सूफी शायर हजरत शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक बात होगी। ये तहरीर है अमीन कामिल की। समीन, बाहमी गुफ्तगू पर मबनी लाइव इंटरेक्टिव शो आप तक पहुंचेगा सुबह 10:30 बजे। मेहमान हैं मुमताज हिंदुस्तानी, माहिर नबातात और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबा नबातात के सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर अंजर अहमद खुरू। इनसे हम कलाम होंगे तस्लीमा अख्तर और फहमीदा खान।

उमंग स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है 1:10 पर। सुपहर 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे सुना जाता है, जबकि गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे नश होता है। हालत वाकात की निकाब कुशाई करता हुआ प्रोग्राम शहरबीन नाप तक पहुंचता है शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ नश्र किया जाता है। स्पोर्ट्स टाइम आप सुन

0: سکتے ہیں رات 8:30 بجے۔ اس میں کھیلوں کا تجزیہ پیش کریں گے پروگرام کے مہمان سید ہمایوں قیصر۔ پروگرام پیش کر رہے ہیں اعجاز ناز کی۔ اور سمعین، رات 9 بجے آپ محظوظ ہوں گے چند کشمیری غزلوں سے۔ یہ تھی ترتیب و تفصیل آج اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی۔ ہم آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح پروگرام جاری ہے۔ اسٹوڈیوز کی گھڑی اشارہ کر رہی ہے کہ صبح کے 8 بجنے کو ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی، جہاں سے آپ ہندی میں خبریں سماعت کریں گے۔ ہندی خبروں کے فوراً بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
1: سنیے، کیا آپ نے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے بارے میں سنا ہے؟
2: بھارت سرکار کا لکش سولر پاور سے بجلی بل زیرو کرنے کا بھی ہے۔
1: اس سے آپ کا گھر سوریہ گھر بن جاتا ہے، مانے بجلی بل زیرو، اور اترکت بجلی پیدا ہوئی تو بجلی گرڈ کو بیچ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو بیٹھے کیوں ہو، ابھی رجسٹر کرو پی ایم سوریہ گھر .gov.in پر۔
3: ہر گھر سوریہ گھر۔
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
6: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए

0: की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
5: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र

0: प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अच्छा
1: आमिर, मौसीकी की जो दुनिया है ना,
2: जी
1: इसमें कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों से होते हुए सीधी रूह में उतर जाती हैं।
2: बिल्कुल
1: और एक ऐसी ही आवाज़ जिसने 60 और 70 की दहाई में हिंदुस्तानी सिनेमा को अपनी मधुरता से मालामाल किया, और वो नाम है
2: सुमन कल्याणपुर का।
1: एक ऐसी फनकारा जिनकी आवाज़ में पाकीज़गी भी थी और गहराई भी, और एक अनोखा ठहराव भी।
2: सुमन कल्याणपुर का इंतकाल भारतीय मौसीकी के एक एतज़रीन के अख्तिताम की अलामत है। इन्हें मौसीकी की दुनिया में एक ऐसी बासलाहियत गुलुकारा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी मधुर और पुरवक्कार आवाज़ से दहाइयों तक सामईन के दिलों पर राज किया। अगरचे इनका मवाजना अक्सर लता मंगेशकर से किया जाता रहा, लेकिन सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक मुनफरद पहचान बनाई और ख़ासतौर पर जज्बाती व रोमानवी गीतों में कह लीजिए कि अपनी मखसूस गायकी के जरिए गहरी छाप छोड़ी। इनके गाए हुए नगमे जिनमें ठहराव और नफासत नुमायाँ थी, आज भी नए सुनने वालों के लिए इतने ही मशहूर कुन हैं जितने कि पुराने दौर में थे।
1: बिल्कुल, इनके कैरियर की एक ख़ास बात है ये कि इनकी वर्सटाइल सलाहियत थी। उन्होंने ना सिर्फ रोमानवी और जज्बाती गीत गाए बल्कि नीम क्लासिकी मौसीकी और भजनों में भी कमाल महारत का मुजाहरा किया। ख़ासतौर पर मराठी फिल्मों के लिए भी उन्होंने बेशुमार यादगार गाने गाए हैं जो आज भी महाराष्ट्र में इंतहाई मकबूल है।
2: जी बेशक, और ये जो प्लेबैक सिंगर थी सुमन कल्याणपुर जी, इनका इंतकाल कल 31 मई 2026 को मुंबई में हुआ। इनकी उम्र 89 बरस की थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थी और इतवार की शाम मुंबई के इलाके लोखंडवाला में वाकई एक रिहाइशगाह पर इनका इंतकाल हुआ। सुमन कल्याणपुर को इनकी इंतहाई सुरीली और दिलकश आवाज़ के लिए जाना जाता था और उन्होंने 1960 से 1970 की दहाइयों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए और न जाने कहाँ तुम थे जैसे बेशुमार मकबूल गीतों को अपनी आवाज़ देकर मौसीकी की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया।
1: इनका मकाम बहुत ही अलग है, और आज ये खूबसूरत आवाज़ भी खामोश हो
2: जी
1: गई।
2: जी जी
1: और कुदरत का यही कानून है, जिसे आना है उसे जाना है।
2: उसे
1: लेकिन
2: तो जाना
1: कुछ
2: है।
1: लोग, कुछ पर्सनालिटीज, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने काम से सदियों तक जिंदा रहते हैं। देखिए ना, इनका काम ऐसा है कि ये तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा बसते रहेंगे, और इनका ये जो काम है हमेशा हमारे आसपास रहेगा, ये नहीं मिटने वाला। इसीलिए चुना मना आमिर, ये भी साथ इंसान चुना करान का सो अमल, वो कोई काम करता है खुद, उससे वो मशहूर हो जाता है या बदनाम हो जाता है। अब इंसान पर है कि वो क्या करे,
2: वो क्या करेगा,
1: तो
2: वो कैसा
1: इंसान
2: अमल
1: चल
2: करेगा।
1: पाए कहीं ते पहचान, मगर इंसान चु पान अख पहचान बने विद है कान। तो
2: बिल्कुल
1: इंसान सुन सु पहचान चु तेमें वो मरंत वंसन जिंद ते है कान थे भी, तो वो मरंत वंसन कर सिंध नफरत को शिकार ते करान।
2: बिल्कुल सही
1: तो
2: बात
1: ये उम्र, ये जिंदगी, ये एक खास मियाद तक हमें मिली है,
2: है।
1: क्यों ना हम अपनी जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ें कि जाना तो जाना ही है, लेकिन हमारे जाने के बाद जो हमें याद करें उनके
2: ताकि लोग सदियों तक हमें याद करते रहें।
1: चेहरों पे मुस्कुराहट आए, दिल में एक खुशी का एहसास हो, ना कि उस तकलीफ का जो हमने उन्हें दी हो।
2: जी हाँ, जिस तरह
1: अगर
2: हम आज सुमन कल्याणपुर को याद करते हैं,
1: बिल्कुल
2: इनकी
1: अगर
2: आवाज़ को
1: हम
2: हमने कैद करके रखा है।
1: बिल्कुल
2: जी
1: बिल्कुल अगर हम सुमन जी की बात करें, तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड
2: जी
1: हासिल
2: मिला
1: से
2: है।
1: भी
2: बिल्कुल
1: नवाजा गया है, और शराफा कामयाबियों के बावजूद सुमन जी हमेशा लाइमलाइट और फिल्मी ग्लैमर से दूर और एक पुरसकून और सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देती रहीं। इनके इसी गहरी फनी सफर और खदमात के अतराफ में हुकूमत हिंद ने इन्हें मुअज्जज तरीन एजाज पद्म भूषण से नवाजा था।
2: या इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इतनी बड़ी रकाबत और मुकाबले के दौर में भी इन्होंने अपनी गायकी की नफासत पर कभी समझौता नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी इनकी आवाज़ को मौसीकी के संजीदा हलकों में एक क्लासिक का दर्जा हासिल है। चलिए एक नगमा पेश करते हैं। 1964 में रिलीज़ हुई है ये फिल्म, ये अपने सामईन तक पहुँचाते हैं। इनका साथ दे रहे हैं इस नगमे में मोहम्मद रफ़ी।
1: बिल्कुल।

0: सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की मिली जुली आवाज़ों में आप ये नगमा समाप्त कर रहे हैं। समीन समाप्त करते हैं तारीख के आईने में आज का दिन। समीन जदीद तारीख में आज का दिन नेपाल के लिए एक सियाह दिन के तौर पर याद किया जाता है। यकम जून 2001 को नेपाल के शाही महल में वली अहद प्रिंस दीपेंद्र ने मुबैना तौर पर अंधाधुंध फायरिंग करके अपने वालिद किंग बैरिंदर और मलिका समेत शाही खानदान के 9 अराकीन को कत्ल कर दिया था, जिसने नेपाल की तारीख का रुख मोड़ दिया।
1: मीडिया और कम्युनिकेशन की दुनिया में आज का दिन एक इनकलाब का दिन था।

0: 1 जून 1980 को दुनिया के पहले 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल सीएनएन केबल नेटवर्क न्यूज़ ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया। इस वाक़े ने दुनिया भर में खबरों की तरसील का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
1: बरसगीर की सिनेमा हिस्ट्री की लेजेंडरी और सफ़े अव्वल की अदाकारा नरगिस दत्त 1 जून 1929 को पैदा हुई। उन्होंने मदर इंडिया जैसी शाहकार फिल्मों में लाजवाब किरदार अदा किए। उन्हें सिर्फ एक अजीम फनकारा थीं बल्कि सामाजिक कामों और इंसानियत की खिदमत में भी पेश पेश रहीं।
0: आमिर, अगर हम बात करें, आज हमने बच्चों की बात की थी, आज बच्चों का आलमी दिन भी मनाया जाता है, वालिदैन का आलमी दिन भी मनाया जाता है और मेरे डे के हवाले से भी आज का दिन
1: मनाया जाता है। जी, ये था तारीख के आईने में आज का दिन। और यहाँ से 8:30 होने को है, आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं खबरनामे के लिए।
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ओ मिनोंग लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ओ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ओ मिन आउलोंग ने म्यांमार भारत तजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ़द भी है, जिसमें बहुत से काबीना वज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ओ मिन का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ओ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से AIADMK मेंबर पार्लियामेंट CV शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के BJD मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं।

0: पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़िराअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस मुहिम का मकसद सरई ज़मीन का तहफ़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़िराअत के बारे में बेतारी पैदा करना है। इस मुहिम में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुछ दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज, खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
0: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजराए डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौक़ों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फ़रोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलों में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। ये खबर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह व बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
2: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1900

0: 70 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
1: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलूकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। BCCI सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने IPL 2026 की बाबकार ट्रॉफी RCB के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त RCB के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को RCB ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह। इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। PM स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरे आब ड्रोन्स तैयार करने का।

0: ऑन।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंज

0: Yours sponsor program Sehti Badan. Your program was Taitan Vatnavan, Haya Wellness and Research Center, Sakku Plaza, opposite bus stand Batmalu Srinagar. Yeti Pratkuni Marzas Tasali Baksh Alai Sabdanchu. Urgent Doed Eastern Ya Eastern Sugar, Thyroid Ya Blood Pressure Shikayat. Nadik Taklif Eastern Ya Zehni Tanao. Phone 7051545788.
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। पयाम सुख प्रोग्राम में अब आइए सुनते हैं आज की सुर्खियां।
2: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
3: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: सुबह खैर आदाब। आज सोमवार है, 1447 हिजरी के जिलहज की 15 तारीख, मुताबिक 1 जून सन 2026 ईस्वी। समीन, श्रीनगर से आज शाया हुए उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों में नुमाया तौर जगह पाई हुई अहम खबरों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके मेज़बान हैं आमिर अशरफ और तस्लीमा अख्तर। समीन, बढ़ते हैं आज के अखबारात की सुर्खियों की जानिब, जहां दुनिया के बदलते हालात और अहम मामलात हमारी तवज्जो के मुंतजर हैं। एक रोजनामे की लीड स्टोरी में इस तरह खबर शाया हुई है, 11 अप्रैल से जारी नशे से पाक जम्मू व कश्मीर 100 रोज़ा हमागीर मुहिम, 50 दिनों की नाकाबिल यकीन कामयाबियां, 1018 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 341 किलोग्राम मनशियात और नशावर अदवियात जब्त, जायदज 200 करोड़ मालियत की जायदादें कुर्क व मिसमार, 923 FIR दर्ज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जेर क्यादत 18वीं पद यात्रा बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी, आज कुलगाम में बड़ी मनशियात मुखालिफ रैली, ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान, सुबह 4 बजे से सपहर 3 बजे तक अहम सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी।
4: अंग्रेजी अखबार की एक नुमाया सुर्खी है, पीएम मोदी अर्जेस पीपल टू टेक प्रिकॉशंस अमिड स्कॉचिंग हीट। एक और हेडिंग है इसी अखबार से, सीएम उमर अब्दुल्ला कॉल्स क्रूशियल एमएलएज मीट अमिड स्टेटहुड अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस।
1: वज़ीर आज़म की इस ताकीद की सुर्खी को एक उर्दू रोजनामा यूं रकम करता है कि शदीद गर्मी के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मन की बात में आवाम को धूप से बचने और सेहत का ख्याल रखने का मशवरा, भारतीय आम की मुख्तलिफ अकसाम का जिक्र, आलमी मंडियों में बढ़ती मकबूलियत को सराहा।
4: अंग्रेजी रोजनामे की एक सुर्खी, गावलिक इकोनॉमी ग्रोज इन कश्मीर एज बम्पर क्रॉप boosts trade, Tulmula Gandharbal farmers embrace garlic cultivation, seek better market support.
1: General Raja Subramani bane Hindustan ke teesre chief of defense staff, mulk ki khud mukhtari aur ilaqai salmiyat ka tahaffuz hamara ahd, khususi taqreeb mein naye CDS ko teenon services ne kiya god of honor pesh.
4: Ek aur shesur ki angrezi rozname se, two families two rivers, one day of tragedy. Father swept away while saving son in Lidar River. Search on.
1: Urdu Roznama mere haath mein aur iski surkhi, Sarana Amarnath yatra ke pesh nazar intizami wa security taiyariyan uruj par tamam mehkame mutaharik. Isi rozname se ye bottom line ki surkhi, Rajouri ke mazafat mein dehshatgardon ke khilaf ऑपरेशन 9वें दिन में दाखिल, फरीकीन के माबेन गोलियों का तबादला, दाखिली खारजी रास्ते सील, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी, दिफाई तर्जुमान।
4: अंग्रेजी रोजनामे की एक और सुर्खी है, एलजीबी के सक्सेना अप्रूव्स न्यू एक्साइज पॉलिसी फॉर लद्दाख।
1: पंचायती व डीडीसी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा, 3 और 4 जून को लिया जाएगा, दही व शहरी इकतदार की नई बिसात बिछने लगी, पंचायती व जिला काउंसिल इंतखाबी अमल रफ्तार पकड़ गया, रियासती इलेक्शन कमीशन का आला सतही इजलास, तमाम जिला इंतखाबी

0: बनाने पर जोर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को फाल बनाने के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी।
1: कुदरती हुस्न से मालामाल मत्स्य केरन और टीटवाल मुकम्मल तौर सियाती नक्शे पर लाने के लिए तवज्जो के तलबकार।
0: उर्दू रोजनामे की एक और सुर्खी, गुलमर्ग में गंडोला कल 2 जून से फिर चालू हो रहा है, तकनीकी खराबी के बाद केबल कारों को दुरुस्त हालत में चलने की इजाजत।
1: सब जिला अस्पताल सोपोर का इमरजेंसी वार्ड, बाकायदगी से सफाई का फुकदान, मरीज परेशान।
0: अंग्रेजी अखबार की एक और सुर्खी, पीएम मोदी हाईलाइट्स रेस्क्यू ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, प्रेजेस कंजर्वेशन एफर्ट्स।
1: मड़वा में माहिर अमराज खवातीन की अदम दस्तियाबी, हामला खातून को 120 किलोमीटर दूर अस्पताल किया गया मुंतकिल।
0: इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स टू होल्ड डायलॉग इन न्यू दिल्ली टुडे।
1: कंक्रीट पुल न होने का शाखसाना, थाइन कलारूस के मकीन आरजी रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर। इसी रोजनामे से एक और खबर, अदालत आलिया की डेलीवेजरों और एडहॉक कारकुनों को राहत, महकमा जंगलात के 17 आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली को बरकरार रखा। समीन, ये थी मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: 16.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश होगा। खुदा हाफिज।
1: तुशु बोजान आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 73.8 मीटर तो एफ एम 73.5 मेगा हर्ट्ज़ पेट मोहतरम रुकिए बात करो तुंद बापत पेश।

0: हो रहा है उस शो का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खास इंटरैक्टिव शो की जिसमें हम आपसे मुलाकात करवाते हैं एक मेहमान की। बस अब से थोड़ी ही देर में आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे आज के मेहमान के साथ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
2: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
3: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
4: सब्र रोशित सुलम।
3: सुनते रहिए हमारी नशरियात
1: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
0: ये पेड़ ये पौधे ये हरियाली ये जमीन सब्ज फार्म, सांस चलती है इन्हीं से, इनसे है इंसान तमाम। तिखा का हासिल है ये नबात आते चमन, इन्हीं के दम से सलामत है ये इंसान का वतन। सलाम है अकीदत उस मिट्टी के नाम जिसने हमें जिंदगी का शऊर बख्शा। समय किराम आज हम बात करेंगे धरती के इन हरियाली भरे मेहमानों की जिनके बगैर कायनात का सांस लेना भी मुहाल है। जी हाँ, वक्त हो रहा है आपकी मुलाकात हमारे आज के खास मेहमान से कराने की। जी हाँ, आज भी हर बार की तरह स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप हैं एक मुमताज हिंदुस्तानी माहिर नबातात यानी बॉटनिस्ट और इस वक्त आप श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे नबातात में एक सरगर्म प्रोफेसर हैं। ये हैं डॉक्टर अंजर अहमद खोरू साहब। खोरू साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं।
5: शुक्रिया तस्लीम जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस।
0: आपके आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामीन को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। हालांकि आपने पहले ही कहा कि मैं अपना जो तारुफ देना चाहता हूँ इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आपके तारुफ में अगर हम बताने के लिए शुरुआत करेंगे तो काफी वक्त हमारा उस आपके तारुफ में चला जाएगा। लेकिन ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, क्योंकि हमारे जो सामान हमारे साथ जुड़ते हैं वो बड़े बेकरार होते हैं इस चीज के लिए कि कब हम अपने मेहमान के साथ मुखातिब होकर बात करेंगे। बात करेंगे आज नबातात की, अपने माहौल की, और इसके बारे में आपने काफी काम किया है, अभी भी आप एक्टिव हैं इस फील्ड में, दो दहाइयों से आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर के पहाड़ों वादियों और जंगलात में पौधों की दर्जाबंदी यानी टैक्सोनॉमी पर आपने बरसों काम किया है। जब आप कश्मीर के इस अजीम और नायाब बायोटा को बारीकी से देखते हैं तो अलमी नबातात यानी बॉटनी की नजर में कश्मीर का यह हरियाली भरा ताज दुनिया के दीगर खितों से कितना मुनफरद है और क्यों अहम है।
5: शुक्रिया तस्लीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सामीन हैं जो इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जुड़ गए हैं उनको मेरी तरफ से सलाम एंड आदाब। आपने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा। आई एम जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ बॉटनी। आपने वजह फरमाया कि लास्ट दो दहाइयों से हम इस एरिया में काम कर रहे हैं एंड मुझे नहीं लग रहा है हमने अभी तिनका पर भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है। द वास्टनेस ऑफ दिस plant diversity that we have in Kashmir. Let's come directly to your question. जो आपने कहा कि मुनफरिद क्या है इस plant diversity में, floral wealth में जो हमारी कश्मीर की है। हम जानते हैं कि दुनिया में जो biodiversity है, जो different types of plants, animals, microbes है जिनसे ये कायनात का वजूद है, ये दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एज वेल एज फौना होता है। जो हम कश्मीर कह रहे हैं कि हमेशा फेमस रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इट हैज़ बीन ऑल्सो फेमस फ्रॉम लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप पॉइंट ऑफ व्यू। उस नेचुरल लैंडस्केप को निखारने में प्लांट्स का एक कलीदी रोल है।

0: जब हम नज़र दौड़ाते हैं बाहर, हमारे जंगल, हमारे मीडोज, हमारे वेटलैंड्स, अदर देन द वाटर विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कश्मीर, जिसके लिए कश्मीर जाना भी जाता है, ये जो ये प्लांट्स हैं दे ये निखारते हैं हमारी खूबसूरती को, कश्मीर की खूबसूरती को। रहा सवाल टैक्सोनॉमी का, दर्जाबंदी कैसे हुई है इन प्लांट्स की। हम जानते हैं कि प्लांट्स एक ही टाइप के नहीं होते हैं, आपको ऐसे प्लांट्स भी है जो बड़े बड़े दरख्त की सूरत में हैं, जैसे हमारा चिनार है, आपको छोटे से छोटे प्लांट हैं, जो हमारा डल है वहाँ छोटे से छोटे अलगी भी हमें होते हैं
1: जी।
0: इसका मतलब है कि वास्टनेस ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज टू ह्यूज। अब कश्मीर की मुनफरियत इनफरादियत इसमें यह है कि ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से एक उस टाइप का फ्लोरा यहाँ पर होता है, व्हाट वी कॉल एज टेम्परेट फ्लोरा, जो कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में नहीं होता है। रीजन बीइंग हमारा क्लाइमेट ऐसा है जो ऐसे प्लांट्स को, प्लांट डाइवर्सिटी को फ्लोरिश करने में मदद देता है, विच इज़ यूनिक टू दिस पार्ट। दूसरा सवाल, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि कश्मीर जो है ये पार्ट है वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। दुनिया में 36 ऐसे स्पॉट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। उनमें एक है जिसको हम हिमालय कहते हैं। हिमालय कश्मीर से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश तक हिंदुस्तान में है। उसमें अगर हम देखें प्लांट्स की बात करें, तकरीबन 12,000 किस्म के प्लांट्स हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, आपके जो फॉरेस्ट्स में टिम्बर ट्रीज हो, आपके ऑर्नामेंटल्स हो, आपके मुख्तलिफ किस्म के डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हो, जो हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जो हम हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं, अगर हम उन सारे प्लांट्स की बात करें 12,000 के करीब मैंने कहा, उसमें से लगभग 5,000 के करीब सिर्फ आपको कश्मीर जे एंड के में मिलते हैं। उसका मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर प्लांट्स की हैं। अब ये प्लांट्स पर से प्लांट्स ही नहीं है, इससे हमारी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी तरक्की के मौके हैं, डेवलपमेंट है, नॉट ओनली डेवलपमेंट फ्रॉम लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मटीरियल गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम एस्थेटिक, एंटरटेनमेंट एंड अदर नॉन मटीरियल सर्विसेज जो हमारे ये प्लांट्स देते हैं, उसमें भी इनका कलीदी रोल है। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन।
1: सर, ये जो अब हम जब हम अपने हिमालय की बात करते हैं
0: जी,
1: तो हिमालय की वो कौन सी नायाब जड़ी बूटियां या पौधे हैं जो इस वक्त मधुमेह के सबब सबसे बड़े खतरे से दो चार हैं, और इनकी बका के लिए क्या फौरी इकदाम किए जाने चाहिए?
0: आपने बजा फरमाया, कुदरत ने हमें बेशुमार फ्लोरल डाइवर्सिटी से नवाजा था, लेकिन एक ग्लोबल एक क्राइसिस लास्ट टू डेकेड्स से दुनिया इससे जूझ रहा है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स हैं, लाइफ के जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये हम नापेद हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक सिंपल सा लेटेस्ट सर्वे की बात कहूँ, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हर साल एक रेड लिस्ट शाया करता है। रेड लिस्ट का मतलब हुआ वो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज जो नापेद के कगार पे हैं, नियर एक्सटिंक्शन जो होते हैं
1: जी,
0: उनमें उन्होंने 1,70,000 स्पीशीज को उन्होंने एसेस किया है, उसमें लगभग 70,000 के करीब जो स्पीशीज हैं वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रही है। अगर उसको हम एक परसेंटेज के टर्म्स में माने, लगभग 1/3 के करीब जो ऑर्गेनिज्म्स हैं दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इवन अगर हम इंडिया की बात भी करेंगे, इंडिया में भी अगर ये IUCN लिस्ट की बात हम इसकी रेफरेंस दें, लगभग 1,000 के करीब स्पीशीज जो है दे आर नियर द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इंडिया दैट मीन्स कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। हमें मालूम है कि डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द डेवलपमेंट, वी हैव टू प्रोवाइड द लाइवलीहुड और से पर्टिकुलरली दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, वी कैन नॉट रिमेन अलूफ फ्रॉम द रेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट अलॉन्ग विद इट वी हैव टू मेक दिस डेवलपमेंट सस्टेनेबल। जो जितने भी हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है उसमें कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं जिनकी वजह से इन पे असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा रीज़न जो दुनिया में माना जाता है, दैट इज़ ट्रू फॉर कश्मीर ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो, दैट हैबिटेट लॉस, जहाँ पर इनका डिवेलिंग प्लेसेस हैं, जहाँ पर ये है, से वाइल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी, हमारे फॉरेस्ट्स, हमारे अल्पाइन मीडोज, हमारे वेटलैंड्स, हमारे रिवर्स, हमारे स्ट्रीम्स, जितने भी ये

0: था ट्रेडिशनली, लेकिन अब 15 फरवरी से ही वो स्टार्ट होता है और उसके बाद खुदा अल्लाह बचाए उससे और बहुत सारे ऐसे वाकत इंस्टेंस हुए भी। अगर आपको मार्च में कभी स्नोफॉल हुआ वहाँ से आपकी फ्लावरिंग हुई है, दैट विल बी डिवास्टेशन फ्लावरिंग के लिए, जो फ्लाई कश्मीरी में हम कहते हैं उसके लिए वो पूरी डिवास्टेशन हो सकती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि लास्ट फ्यू ईयर्स में हमें अनसीजनल स्नोफॉल ऑटम में भी हुआ, उस वक्त हमारा जो फ्रूट का क्रॉप जो था पूरा का पूरा भरा हुआ था, जो ही स्नोफॉल हुआ
1: सारा
0: लॉस्ट हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं, सिग्नल्स हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारे किश्तवाड़ में एक वो जो इंटेंसिटी, दिस कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ज्यादा हो रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं जिससे हमें पता चले कि क्लाइमेट वाकई तौर पर कश्मीर में चेंज हो रहा है। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो हमारे समर्स अब होते हैं यहाँ पर, दे आर ह्यूमिड, ह्यूमिड इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा हमें पसीना आता है। एंड नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलरली श्रीनगर सिटी में हर कोई अब चाहता है कि एसी लगवाए अपने घरों में।

0: ईयर्स में हमें अनसीजनल स्नोफॉल ऑटम में भी हुआ। उस वक्त हमारा जो फ्रूट का क्रॉप जो था पूरा का पूरा भरा हुआ था, जो ही स्नोफॉल हुआ
1: सारा बारिश हो गया,
0: लॉस्ट हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं, सिग्नल्स हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारे किश्तवाड़ में एक वो जो इंटेंसिटी, दिस कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, ज़्यादा हो रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ जिससे हमें पता चले कि क्लाइमेट वाकई तौर पर कश्मीर में चेंज हो रहा है। अगर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जो हमारे समर्स अब होते हैं यहाँ पर, दे आर ह्यूमिड, ह्यूमिड इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा हमें पसीना आता है। एंड नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलरली श्रीनगर सिटी में हर कोई अब चाहता है कि एसी लगवाए अपने घरों में। दैट वॉज अनहर्ड ऑफ। लास्ट ईयर मैं करगिल गया था, करगिल में कहते थे कि यहाँ पर फैन का नाम ही निशान नहीं होता था, लेकिन करगिल में भी अब वो फैंस अपने घर में लगा रहे हैं और समर में यूज कर रहे हैं। ये जो है मानसून का, मानसून टाइप, अदरवाइज ये जो ह्यूमिड समर हम देखते थे जब हम मई या जून में बाहर जाते थे, जम्मू जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहां पर ऐसा हमें वो दम
1: देखने मिल जाता था, सफोकेट हो जाता था इंसान।
0: अब हमें यहाँ पर भी होता है
1: सफोकेशंस देखने को मिल जाती हैं।
0: अर्ली सिग्नल्स दैट कश्मीर में भी क्लाइमेट चेंज का जो ग्लोबल एक फिनोमेनन है यहाँ पर भी वो हो रहा है।
1: उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा नबातियाती निजाम है उसको कितना मतलब खतरा पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, या फिर अभी भी ऐसा है चांसेस के उस हद तक वो डिस्ट्रॉय या मुतासर नहीं हुआ है?
0: जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अब हम कहें जो मेरा अपना डोमेन ऑफ एक्सपर्टाइज है, प्लांट्स की बात करें, जो क्लाइमेट चेंज है इसको हमें थोड़ा बहुत डिफर करना पड़ेगा वेदर से। वेदर इज डेली जो हमारा होता है, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स व्हेन क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म फिनोमिनन, हमारा जो इम्पैक्ट होना चाहिए क्या हमारे नबातात पे, प्लांट्स पे, इसका क्या असर पड़ा, उसके लिए भी हमारे पास डाटा जो होना चाहिए, साइंटिफिक डाटा, वो भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये जान के हमने एक डिकेड पहले 2014 में हमने एक साइट मुकरर की गुलमर्ग के ऊपर, राइट साइड में, अपर राइट साइड
1: जहाँ से ये फ्लोरल हॉटस्पॉट है, बहुत ही बहुत बहुत
0: उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग साइट्स। हम हर साल वहाँ पर जाते हैं, हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर लगाए सॉइल में जो हमें मेजर करते हैं, वो वायरलेस बेस्ड है, वो हमें थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर मेजर करते हैं टेम्परेचर। उससे हमें पता चले कि क्या वाकई तौर पर अगर दुनिया में दूसरे यूरोप के अल्प्स में या नॉर्थ अमेरिका में या दूसरी जगह चाइना में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, कि वाकई तौर पर यहाँ पर भी हो रहा है। साइंस में एक बात होती है, साइंस में आप कहीं सुनाई कहानी पे
1: बात नहीं कर सकते, सारा एक्सपेरिमेंट
0: होना चाहिए। लास्ट 10 ईयर्स से जो हमने माशाल्लाह डाटा कलेक्ट किया है उसे हमें क्लियरली सिग्नल मिल रही है, जो हमने पब्लिश भी किया इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि हमारा टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने वो चीज़ भी उसमें साथ किया, जो वार्म लविंग प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, जो कश्मीर में प्लांट्स होते हैं दे आर मोर कोल्ड अडेप्टेड, जो जम्मू या जम्मू के बाकी ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं वो दे आर वार्म अडेप्टेड। जो वार्म अडेप्टेड प्लांट्स हैं वो भी अब वीड्स की सूरत में यहाँ आने स्टार्ट हो गए। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा एंडेमिक है वो प्लांट जो सिर्फ कश्मीर में ही है, कश्मीर से बाहर नहीं है या कश्मीर के खत्ते में, जिसको वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, उन पे ज़्यादा जो बाहर वाले प्लांट्स हैं दे विल बी वेरी मच कम्पिटिटिव, और उससे उनकी जो पॉपुलेशन है डे बाई डे डिक्लाइन हो जाएगी। उससे क्या असर पड़ेगा, जैसे हम नेचुरल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं, हमारे अपने कल्चर हैं, इस तरह से हमारी बॉटनिकल हेरिटेज बॉटनिकल हेरिटेज को हर एक जगह को हमें किसी भी सूरत में कंजर्व करना है। क्लाइमेट चेंज से ये चीज़ें आई हैं।
1: अच्छा, जो हमारा जो अगर कश्मीर की बात करो, यहाँ पर हमें अवेलेबल है ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे पौधे जो कश्मीर से बाहर कहीं और नहीं मिलते, जिनकी डिमांड है बाहर?
0: जी जी जी जी,
1: जो बेशकीमती है, जो यूजन सिर्फ सान वैली ही होता, अल्लाह ताला ने नायत चकर मत।
0: एस्पेशली सोचो
1: ये मैं से तुम रिसरावन पर्सन
0: से, फ्रॉम माय साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव नॉट टू सी द प्लांट्स ओनली फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव टू आल्सो सी द प्लांट्स फ्रॉम इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू देयर लोकल कम्युनिटी।
1: एग्जैक्टली,
0: उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स में होता है मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स जो हमारी है, जो पहले जमाने से यहाँ पर यूज की जा रही है,
1: नायाब भी है और बेशकीमती भी है, अगर खत्म हो गई तो वो बहुत बड़ा लॉस है।
0: और दूसरी बात है, उनका क्यों रिसर्जेंस क्यों होगी, रिवाइवल क्यों स्टार्ट होगा, जो हमारी कीमियाई केमिकल जो मेडिसिन
1: है
0: बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो ये प्लांट बेस्ड है, नेचर बेस्ड
1: जो है वो
0: उसमें ऐसे वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब हमने एक स्टडी की, हमने कहा हाँ ठीक है, कश्मीर में बहुत ज्यादा प्लांट्स है जिनके मेडिसिनल वैल्यूज है,

0: हमने कहा हर कोई कह रहा था, कोई कह रहा 3,000, कोई कह रहा था 5,000। मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे जब मैंने रिसर्च किया ऐसे 20 साल पहले, ग्रेटर कश्मीर में भी एक बार आया कि 5,000 प्लांट्स हमारे पास हैं। मैंने सोचा जब हमारे पास 5,000 प्लांट्स है नहीं कंप्लीट, तो मेडिसिनल कहाँ से 5,000 है। हमने एक स्टडी की जिसमें हमने पूरे जम्मू कश्मीर में देखा कि कितने हैं, लगभग 1,000 से जायद किस्म के प्लांट्स ऐसे हैं जिनके नून मेडिसिनल यूजेस है। फिर हमने उसमें एक चीज कहा कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज्यादा यूजेस है, जो हमें कल्टीवेट करने चाहिए, चाहे हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर है जिनकी थ्रेट्स भी साथ में है, क्योंकि जब यूज ज्यादा है उनको ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता है।
1: Exactly.
0: और साथ में उनको कंजर्व करने की जरूरत है,
1: इकोनॉमिकली भी वो हमें बहुत बेनिफिट दे सकते हैं अगर हम
0: कल्टीवेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की वो साइंस बेस्ड होनी चाहिए। हमने 31 प्लांट्स को हमने उसमें लिस्ट किया जिनके यूजेस भी बहुत ज़्यादा है इंडियन मेडिसिनल सिस्टम, यूनानी मेडिसिनल सिस्टम या आयुष के डिफरेंट मेडिसिनल सिस्टम जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है, और उनके जो रॉ मटेरियल्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड कंट्री में है और कंट्री से बाहर भी। इस जमाने में गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप की भी आगे ज़रूरत है। देर आर मैनी प्लांट्स जो इसमें हैं, जैसे हम कहते हैं वन वांगुन कहते हैं, त्रिपत्र कहते हैं। त्रिपत्र एक ऐसा प्लांट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट भी किया जा रहा है। हमें चाहिए कि उसको कंजर्व भी करना है, साथ में उसकी कल्टीवेशन भी करें,
1: प्रोटेक्शन भी रखें उसकी,
0: कल्टीवेशन भी करें, ताकि हमें लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, पर्टिकुलरली आई एम एम्फसाइजिंग मोर एंड मोर ऑन द लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि मुझे एक चीज़, हमें कंजर्वेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिटी में बैठ के हम बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाएं, उसमें अच्छी अच्छी वुड कार्विंग करें, लेकिन जो पहाड़ पर रहा है बंदा जिसको कोई सोर्स नहीं है, उसको हम कहें कि आप टिम्बर स्मगलिंग कर रहे हैं, उसका तो लाइवलीहुड नीड है, ये हमारा तो ये लक्ज़री नीड है।
1: Yes.
0: We have to try के बैलेंस,
1: तो हमें उस चीज को भी ख्याल में रखना है, उस चीज को भी देख के हमें इसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ताकि हमारा जो ग्रीन गोल्ड है वो सेव भी रहे, वो लोगों के काम भी आए और उसकी किल्लत भी ना हो। मैं आपसे एक खास सवाल पूछने वाली हूँ हमारे ये हर्ब्स के हवाले से, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक खूबसूरत नगमे के लिए,
0: प्लीज।

0: टैक्सोनॉमी हमें पौधों का नाम सिखाती है, बॉटनी उनकी जिंदगी का फलसफा बताती है, और बायोटा हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सब इस धरती पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कश्मीर का एक पौधा भी अपनी शिनाख्त अगर खो देता है तो समझ लो गोया कश्मीर की एक तारीख का सफा फट जाता है। सर, आपकी तरफ आते हैं फिर। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक खास सवाल पूछना चाहती हूँ मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से, जो कश्मीर की हर्ब्स हैं उनके हवाले से। आपका जो तजुर्बा है, काम है, 20 साल से आप इस में काम करें इस शोबे में, और आपका काफ़ी तजुर्बा भी है इसमें, काफ़ी कारनामे आपने अंजाम दिए हैं, आपके बहुत सारे अवार्ड्स से भी आपको नवाजा गया है। तो मैं आपके तजुर्बे के हिसाब से ये जानना चाहूँगी कि अगर 100 साल पहले की बात करेंगे, कशीर उस वारिया रीच हर कुन मामलस मज तो वन नबाता थी निज़ाम करा अत मान कशीर उस मन वेल्सली रिच हाईली रिच यथ नहन तक। बट अगर हम आज की बात करेंगे 100 साल पहले जो हर्ब्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हमें अवेलेबल थे, आज उनमें से कोई ऐसी मेडिसिनल प्लांट या हर्ब है जो बिल्कुल नक्शे से गायब हो चुकी है, जो हमें आज मुहैया नहीं है?
1: वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम 100 साल पहले की बात करें, लेट अस टेक दिस लॉरेंस साहब जिनको बोल रहे थे, जिनकी वैली ऑफ कश्मीर है, उनका एक सेपरेट चैप्टर है उस बुक में जो फ्लोरा को डील करता है। उसमें वो क्लियरली लिख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट थे उस वक्त, अक्सर हम कहते हैं पंजाब, कश्मीरी और पंजाबी, बहुत सारे ऐसे प्लांट थे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर टेटफन, इस तरह से गुरेज से एक आता था एक किस्म का टेटफन दैट दे कॉल एज जून कहजबान वनवांगन, या और एक इम्पॉर्टेंट प्लांट कोट जिसको हम कहते हैं,
0: मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
1: गवर्नमेंट ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें एक कोट एक्ट भी बनाया क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्ट किया गया कि वो नापेद होना स्टार्ट हो गया। उस चैप्टर की अगर हम बात करें जिसमें वो जिक्र हुआ है कि प्लांट्स का, फिर हम आजकल की जब हमने लास्ट से 2 decades में सर्वेज किए हैं ऑल अक्रॉस कश्मीर, डेफिनेटली ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो ज़्यादा डिमांड में, उनकी जो पॉपुलेशंस हैं बहुत कम हुई है,
0: नायाब नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है।
1: नायाब होना, उसके लिए आपको बहुत सारे एक्सटेंसिव, यू शुड हैव नो डाउट लेफ्ट कि अब ये
0: नहीं है।
1: अलबत्त एक चीज़ हम कह सकते हैं यहाँ से डिसअपियर हुए हैं। से मैं ऐसे कहूँ, अगर आपका पहले ज़माने में आप गुलमर्ग जाते, आपको नीचे जो मीडो है या जहाँ से वो गंडोला क्रॉस होता है वहाँ पर आपको कोट इजीली
0: मिल सकती थी।
1: अब आप जाइए पूरे गंडोला के दोनों साइड से, आपको कोट कहीं नहीं मिलेगा।
0: रीज़न
1: भी जो मैंने सबसे पहले इससे पहले आपके क्वेश्चन के
0: आंसर
1: दिया, क्लाइमेट ही नहीं, जो हैबिटेट
0: डिस्ट्रक्शन
1: होती है।
0: ओके,
1: क्योंकि आपको ये दिस आर वेरी सेंसिटिव प्लांट्स, जब हम आप उनकी सॉइल डिस्टर्ब करते हैं, जब आप उनके जो दूसरे प्लांट्स हैं से शेड जो ट्रीज उनको देती हैं या बाकी जो इसके साथ पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जब उनमें डिस्टर्बेंस आती है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है।

0: ऑटोमेटिकली ये जो स्पीशीज हैं वो भी उनकी
1: डिस्टर्ब हो जाती है,
0: कम होती है.
1: ओके,
0: ये कोट का ही सवाल नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लांट लास्ट वन डिकेड से, जो त्रिपत्र एक प्लांट है जिसके तीन पत्ते होते हैं,
1: ओके,
0: इसका भी काफी ज्यादा डिमांड आ गई इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट,
1: क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू जो है
0: स्टेरॉइड्स में से निकलता
1: है, बहुत बहुत हाई,
0: इसके रूट में से निकलता है. अब लोग क्या करते हैं, बिफोर इट कम्स टू फ्लावरिंग, उसके बाद उसके सीड बनना स्टार्ट होते हैं, वो उससे पहले ही उसके रूट निकालते हैं,
1: डीरूट
0: करते हैं, उससे वो वही प्लांट डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो जो पूरा इकोसिस्टम, जो हैबिटेट वहां पर होता है वो
1: इंबैलेंस हो जाता है,
0: खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो इन प्लांट्स की होती है प्रोपेगेशन
1: वो डिस्टर्ब हो जाती है,
0: वो कैरिंग कैपेसिटी
1: खत्म हो जाती है.
0: इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेजर मेडिसिनल प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन, अब वो बहुत ज्यादा रियरली आप इनको,
1: ये तो प्रिंसिपल अकला कुछ सवाल यूज जिन ये डिस्टर्बेंस गसान छे जो हमारे इस नबाता थे निजाम के साथ हो रहा, तो उन तजुर्ब क्या चुना, ये छा डेलिबरेट अटेम्प्ट, ये छा गफलत, ये क्या है, हमारी गफलत की वजह से हम इसको डिस्टर्ब करें या फिर हम डेलिबरेटली ये सब कर रहे हैं. अगर एक आम इंसान का इंटरफेरेंस इसमें है, आम इंसान की वजह से ये सबसे ज्यादा हो रहा है, लेक आपने अभी कहा कि तंबरूठी कड़ान, तो अगर ये आम इंसान जो करा यही की गफलत चोरी है, अनअवेयरनेस है,
0: बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, रीजन बींग आम इंसान जो तेज शाम मिसाल के तौर पर फॉर डेली लाइवलीहुड खतरे, अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तेज दमो
1: तो वो ऐसे नहीं करेगा,
0: नहीं करेगा.
1: और दूसरी बात
0: इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, आई कैन नॉट से, बट दिस बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल
1: ऑफ द पीपल.
0: ये ऐसा चीज है जो हमारे जो डेवलपमेंटल अंदाज जो है ना, डेवलपमेंट होने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें हमें एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है. कोर्स करेक्शन कैसे मैं कहूँ आपको, बहुत सारे से जैसे हमने रोड बनाया कहीं पर माउंटेन्स में, जो ही रोड हम बनाते हैं, जैसे इफ इट्स इक्विवेलेंट, हम मेनलैंड इंडिया में जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो वहां पर कॉस्ट लगेगा इस पे, यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट लगेगा. रीजन बीइंग आपको साथ में इसके जो डलवान है ना, उनको भी बंद करने हैं, उनको रेस्टोर करना है. अगर आपने सिर्फ रोड बनाया उसके बाद वहां पर छोड़ा, वो सारा का सारा जो वहां पर पहाड़ है वो नीचे आ जाता है, नीचे हमारी नदी नालों में जाता है और वहां पर सिल्टेशन हो जाती है. पॉइंट इज कि मैं आम लोगों को इसमें नहीं कहूंगा
1: इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप,
0: दे आर पार्ट ऑफ,
1: मगर तुम्हें मच अवेयरनेस, तुम्हें मच पता है हर्बल प्लांट पहचान छ, अगर वो जाते भी हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है शायद कि हमें इकोनॉमिकली ये कितना रिच बना सकता है, ये कितना बड़ा,
0: मुझे लग रहा है अवेयरनेस है हमारी पहली जनरेशन जो हमारे एल्डर्स है ना, अच्छी खासी है, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है,
1: बट वो इसकी कदर करते हैं, वो उसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं, बट
0: जो हमारी
1: न्यू जनरेशन है
0: जेन जी जो आजकल है, एक फिनोमेनन जब से मैंने बहुत बार कहा एक्सटिंक्शन नापेद होना
1: हाँ, माधुर्यत,
0: और एक चीज दुनिया में आ रहा है, कह रहे हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारी नई जनरेशन
1: exactly.
0: है ना, उनको नेचर एक्सपीरियंस बिल्कुल हो ही नहीं रहा है,
1: उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन से एग्जाम उठाने चाहिए,
0: जो आप कह रहे हैं अवेयरनेस, और स्कूल्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल आजकल प्ले करते हैं, जो हाइकिंग के लिए उनको लेते हैं, या जो उनको एक्सकर्शन पिकनिकल्स के लिए लेते हैं, या डिफरेंट एनवायरमेंटल कंपेन्स में उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं. लेकिन और एक चीज़, आई बिलीव टाइम हैज़ कम, वी हैव टू मूव बियॉन्ड अवेयरनेस, वी हैव टू इनकर द कॉस्ट, जो इसको जख पहुँचाएगा उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा. Whether at government level or individual level. Then मैं सिंपल सी एग्जाम्पल आपको ये बताऊँ, जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है. दिस इज द बिगेस्ट आफ्टर हॉर्टिकल्चर एप्पल इंडस्ट्री, ये आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, और जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे. उसके लिए टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है. लेकिन जो टूरिज्म हम प्रमोट करते हैं उसके साथ बड़ा एक मसला हमारे साथ है, वेस्ट मैनेजमेंट का, पॉलीथीन का, कंप्लीटली उसके बाद 10 years down the line उस स्पॉट पे कोई फिर जाता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट मैनेज मिसमैनेजमेंट मैं कहूँगा. अब अगर हम इंडिविजुअल को कॉस्ट इनकर करेंगे, अगर आपने ये पॉलिथीन यहाँ पर किया
1: तो
0: आपको इतना
1: पे करना पड़ेगा.
0: ये सिर्फ लॉ में ही नहीं होना चाहिए, रियली वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होनी
1: चाहिए.
0: एक इक्विवेलेंट एक एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, लद्दाख की, हमारा नियर बाई रीजन है, आप कहीं पर वहाँ नहीं देखेंगे पॉलीथीन यूज होना. डीप इन डाउन इन द, अगर आप किसी विलेज में जाएंगे जहाँ पर जस्ट 10 है

0: लेट्स होंगे लद्दाख में, लद्दाख काफ़ी 60 किलोमीटर्स के बाद आपको मामूली सी पॉपुलेशन मिलेगी,
1: ओके
0: वहाँ पर छोटा सा कोई दुकान होगा, आप कोई चीज़ लेंगे आपको वो पॉलीथीन में नहीं देगा. दैट मीन्स दे इम्प्लीमेंट, इट इज़ नॉट ओनली अवेयरनेस प्लस
1: मतलब वही है कि ये गफलत शहरी से इंसान गफलत से तेली अवेयरनेस पाई आज सो अवेयरनेस बढ़ाने खातर ताकि अगर हम नबाताती तौर इतने रिच है कशीर से ये सा मतलब ये कुता है कि सोन मैशियत है ये मैशियत के रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ साबित हो सकता है अगर हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें उस तरह से बूस्ट करें कि अमे रंग से वह सरमायदार कशीर मगर गफलत ना तेल गस पाई कि कुछ प्लांट कत लग लाइक ट्राइबल्स को पता है मगर तम वेल्सली सू इस्तेमाल तक आम इंसान तमिस अमिच कदम क्योंकि क्लाइमेट की वजह से हमारे जो हर्बल मेडिसिन है ये जो हमारे पास एक किस्म का गोल्ड है तो ग्रीन गोल्ड ये भी है हमारे पास ये खत्म हो रहा है नापेद हो रहा है तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं एक आम इंसान को अवेयर करने के लिए
0: ग्लोबल रीजन बी इट्स ए टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन युद्ध सीमित कह एक्रॉस वर्ल्ड फिनोमिनन तथा प्लांट ब्लाइंडनेस कि लूकन आम लूकन एज कम्पेयर टू एनिमल प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्लाइंड ब्लाइंड मीन्स तम ज्यादा पता सेम इज ट्रू फॉर कश्मीर ऑल्सो तो इसलिए कैंपेन चलाम थ्रू आउट वर्ल्ड कि इस प्लांट ब्लाइंडनेस अत मुतलिक पजन इकदाम तुलन तम इकदाम कित कुल से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वह प्रमोशन प्रोग्राम्स करा ये मुख्तलिफ किस्म या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स या वर्कशॉप्स या कंटिन्यूसली बॉटनिकल गार्डन ये मज़ा तकरीबन 500-700 किस्म प्लांट तम प्लांट तम यमीर हिंदे प्लांट अक्स जाए से तम ओवर द लास्ट 50 ईयर्स तक ग्रो कर डेली मतलब एवरी वीक लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कॉलेज स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर एंड वी गिव देम दैट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ये प्लांट इसलिए यूज़ होता है ये प्लांट इसलिए यूज़ होता है ये प्लांट आपके एरियाज में भी है इसको हमें इस तरह से कंजर्व करना चाहिए मुझे लग रहा है एट स्मॉलर स्केल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेवल पे कोशिश करान कि नव जनरेशन बिकॉज दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर फ्यूचर तिमन गसि अवेयरनेस अत बिकॉज वंस दे आर अवेयर सून फ्यूचर पग
1: प्रोग्राम्स होने चाहिए इस बारे में ताकि एक आम इंसान जो है इससे मतलब उसको पता चल जाए वो इससे फैमिलियर हो जाए उसको इस पहचान में आ जाए ये सारी हर्ब्स तो चाहे जहाँ पर भी देखें वो इसकी कदर जाने और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कल्टीवेशन की बात की गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि अख आम इंसान को उसने तथ खतर वातना जख वातना या आम इंसान क्या ये अमिश नॉलेज है रिसेंटली ऐसे इस कर मलिक थसिल अख सो हर्ब यूज मतलब मोस्ट असल जान बेनिफिट से तथा और बहुत ही कॉस्टली जाता है मगर अगर इस पूछो कि रिसेंटली दिल में तक मुतलिक रिसर्च कर एक आम इंसान की हैसियत से मैं कोई डॉक्टर की हैसियत से नहीं लेकिन जब उसके बेनिफिट्स पता चले तो कई बार मुझे ये पता चला कि लोकली सड़कन पे खोत एंड वी आर नॉट अवेयर
0: पर्पल पोश प्लस अमिक लीव सफेद हू बड़ लीव अगर तुम गु बास
1: यूनिवर्सिटी
0: आकाशवाणी श्रीनगर मलखा अख जाय दोनव साइडन खसान जायन खसान काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हेल्थ बेनिफिट
1: जब मेडिसिन हमें मिलती है वो कितनी कॉस्टली मिलती है लिवर के लिए लिवर डिजीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है
0: इतने कहीं बेशुमार सीन प्लांट्स
1: ये जन बातें पर मगर अच्छी नहीं है
0: इन बेनिफिट्स छ इमे अगर इस तुम कल्टीवेशन मास कल्टीवेशन लेवल पे करो प्लस मार्केटिंग गति तम फार्मरन पगह मार्केटिंग एक बोर्ड बार इशू आता पोटेंशियल बायर्स किम छ तिमन ताकि तिमन मेल यूस तुम प्रोड्यूस आस तिमन मेलन रियल कॉस्ट्स मेलन तिमन ताकि तिम हकन पनन लाइवलीहुड्स यात सित
1: वाबस्त करते हैं आप यूनिवर्सिटी में बायोटेक लैब की इस वक्त कायदत करते हैं اور اگر اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہ جو بایوٹا لیب ہے اس کا مستقبل کا ویژن کیا ہے اور وہ کون سے نئے ماحولیاتی راز ہیں جن سے آپ کی ٹیم فی الحال پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اس بارے میں

0: सर, जैन की बायोडाइवर्सिटी के जो आप काउंसिल के जो आप माहिर रुकन हैं, उस एज पर दैट जो है आप मेंबर है, आपकी जो इन हर्ब्स को बचाने का अपना जो काम रहा है,
1: जी
0: क्या करते हैं आप एक जैन के बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के रुकन होने के नाते,
1: जी
0: क्या कोशिश रहती है आपकी और क्या किया है अभी तक, कितनी कोशिशें आपकी सक्सेसफुल हुई हैं?
1: जेएनके बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. कंट्री में एक लॉ पास हुआ 2002 में जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. रिसेंटली 2023 में भी इसमें अमेंडमेंट आ गई. इसका मेन एम जो है इस एक्ट का, जो पार्लियामेंट ने इसमें भी लेजिस्लेशन पास की, कि हम कंजर्व कैसे करें बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबली यूज़ कैसे करें, और जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको हम शेयर कैसे करें. इसमें नेशनल, जैसे हमारा पंचायती राज सिस्टम है, इस तरह से इसका थ्री टायर सिस्टम है. एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो चेन्नई बेस्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है. और दूसरा स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, क्योंकि हमारी यूटी है, यूटीज को काउंसिल होती है, जैन के बायोडाइवर्सिटी काउंसिल. और थर्ड टायर इसका होता है जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होते हैं, जो विलेज लेवल पे होती है. उन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ का क्या रोल होता है, उनको जो अपने इर्द गिर्द गाँव में, नज़दीक फॉरेस्ट में जितने भी उनको हर्ब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं.

0: हैं उनका एक डॉक्यूमेंट करना होता है, उसको कहते हैं PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। लास्ट थ्री पहली टर्म जो थी और दूसरी टर्म जो मेरी इसमें है, हमने एक कोशिश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कि मोर देन 4,000 PBRs जो है जो ने BMCs ने डॉक्यूमेंट की है,
1: okay.
0: क्या वेल्थ उनको है। इसमें एक प्रोसेस ऐसा भी है कि उनको कुछ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, कुछ ऐसी साइट्स यहाँ पर जो रिच है फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमारा शंकराचार्य है एक सेक्रेट ग्रुप है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे जैसे हमारे स्थान होते थे वहाँ पर कुछ ऐसी ट्रीज हम रखते थे जिनको कोई पास नहीं, उसको कोई कट नहीं करता था, रीजन भी कुछ कल्चरल रिलीजियस उसके साथ रिलेशंस थे, उन चीज़ों को उबारना। और बहुत सारे ऐसे प्लांट जो मैंने पहले ही बात की कि उनका अब नापेद हो रहे हैं, उनकी कल्टिवेशन करना, उनको प्रमोट करना, ये इस पर्टिकुलर काउंसिल का मैंडेट है। इसमें बहुत सारा काम और भी बाकी है, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर फ्यूचर ऑल्सो टू वर्क इन दिस काउंसिल, पर्टिकुलरली इन रिलेशन विथ वाट इज हैपनिंग एट द नेशनल लेवल। बायोडाइवर्सिटी काउंसिल में यूजुअली हमारा मेन एम ये होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जो आप कह रहे थे पहले ही कि उसके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें वो इनिशिएटिव्स भी ये ले रहे हैं। और प्लस और एक चीज़ है, जो बाहर से कोई आएगा, हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज है, वो कहेगा कि मैं इस रिसोर्स को यूज़ करूँगा, प्लांट को यूज़ करूँगा, कोई कंपनी होगी
1: जी,
0: लेकिन उसके इवज में आपको इतना कुछ पैसा दूंगा, वो जो पैसा है वो फिर शेयर करना है जो किसी कम्युनिटी के साथ है, जैसे आप कह रहे थे जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी अच्छी खासी नॉलेज है, उस नॉलेज को वो इंडस्ट्री यूज करेगी, वो फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनी यूज करेगी, फिर कोई ड्रग बनाएगी, मेडिसिन बनाएगी,
1: एज इंस्ट्रक्टर्स या एज ट्रेनर्स आप उनको ले सकते हैं।
0: नॉलेज किनके पास थी? ट्राइबल्स,
1: ट्राइबल्स के पास।
0: लेकिन कौन बेनिफिट ले रहा है? कोई ड्रग कंपनी। ऐसा मैकेनिज्म आया है जिसको हम कहते हैं ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से उस कंपनी को लोकल्स के साथ वो शेयर करना है, एक शेयर प्रोपोर्शनेट शेयर होता है, जो ताकि वो कम्युनिटीज भी बेनिफिट हो जाए और साथ में वो जो कंपनीज हैं उनका भी उनका जो प्रोग्रेस है वो भी हो जाए। ये इसका और एक इम्पोर्टेंट काम है, एक वजह करना, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे बेनिफिट्स को हम शेयर करें आउट ऑफ द यूज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी।
1: ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये यही बात हम कर रहे थे कि एक आम इंसान तक इसकी नॉलेज पहुंचनी चाहिए, इसकी पहचान पहुंचनी चाहिए। तो ये जो एक रास्ता है कि ट्राइबल्स को आपने इसमें इन्वॉल्व करके, अगर ये हो जाता है तो वो लोग जो इसकी नॉलेज रखते हैं, वेल नॉलेज है उनके पास, तो वो एक आम इंसान को ट्रेन कर सकते हैं। फार्मर्स को अगर हम इसमें कल्टिवेशन बेसिस पे इन्वॉल्व करेंगे तो उन तक भी वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये कदम है, ये कोशिश है, ये कामयाब हो जाए और हम अपने नबाताती निज़ाम को, अपने माहौल को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब हम बातें तो बहुत कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जितनी बातें करें कम है, लेकिन वक्त इशारा कर रहा है कि आपसे इजाज़त लें। इजाज़त लेने से पहले अपने सामीन तक आप कोई ख़ास पैगाम अगर पहुंचाना चाहें तो क्या हो सकता है?
0: विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न दैट व्हाटएवर मटेरियल यू हैव, मटेरियल वैल्यू जो है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स नॉन मटेरियल।
1: ओके,
0: दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक बियॉन्ड आवर इंडिविजुअल स्पीयर्स, वी हैव टू सी इफ वी डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी इन रिवर्स it will be good for we people also. At the end, I will also thank the Akashvani Srinagar for inviting. Shukriya karan Akashvani Srinagar, you may invite kudos at programs must.
1: शेयर कर ऐसे सामीनों से, बोजन वालों से। उम्मीद करो बोजन वाल तिमन अजुक प्रोग्राम फिक्री तो तोरम तो पसंद तो आमु तो जरूर चाहिए मिच कि अस करो पन्नस माहौल बचाने हर मुमकिन कोशिश पन्ने लेवल पे पन्ने घर पे इनफरादी तौर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे यहीं पर इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह अगली बार फिर आपको बुलाएंगे, फिर इस मौजू पर अच्छे से बात करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे और आप सबसे भी हम यहीं पर इजाजत लेना चाहेंगे। प्रोग्राम पैम सुब में आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह फिर आपसे मुलाकात होंगे, जब तक के लिए आप जुड़िए हमारी साथी फहमिदा के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।

0: गशन यो समय कमनी कमनी हाई दीदार
1: वोल किस बागस कर मैं पोग

Mertuk'la albaşas Macid-i Musafir Sporası Baparkası

0: سمن چھکر تو روز سو تھی بوزان پیش اس کر عبدالرحمٰن بابتی ہند ستھی منش بوزو تہ کلام شمس فقیر یہ آکاشوانی سری نگر سون اعلان بوزیو یہ آکاشوانی سری نگر ہے سمن دن کے 12 بج چکے ہیں پیش آکاشوانی دلی سے خبریں
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar president arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahwar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi. The India

0: अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोख देने, तिजारत को आसान बनाने और इकतजादी तरक्की को तेज करने के लिए ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे के आर्मी मैार का होना जरूरी है। श्रीनगर में वोल्वो बसों के नए फ्लीट की इब्तदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इकदाम से जम्मू कश्मीर भर में रबते को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बाद में उन्होंने शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में मुनदा रंगे कश्मीर नुमाइश का दौरा करके वहां सन्नती इदारों, सन्नतकारों और सिविल सोसाइटी समेत तमाम शराकत दारों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत, खुशहाल और मुस्तबिल के तकाजों से हम आहंग जम्मू कश्मीर की तमीर के लिए इज्तमाही तौर पर काम करें। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि फरीज़े हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला 2 जून मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई। मुल्क भर में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ज़िराअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। अभियान के दौरान खेतों में खादों के इस्तेमाल और किसानों की साइंसी मशवरों के अलावा मौसमी तब्दीली से मुतलिक बरवक्त जानकारी देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। साबिक वजीर अजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जेपी नड्डा, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे समेत कई अहम शख्सियात की राज्यसभा में मुद्दत खत्म हो रही है। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और गिनती इसी रोज की जाएगी। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल की हिदायत पर तंबाकू मुखालिफ दिन के मौके पर कल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग मकामात पर घर घर जानकारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान लोगों को तंबाकू के मुजर असरात और तंबाकू नोशी के नुकसानात से आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉ बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने मटन का दौरा करके 17 मई से जारी अधिकतम मास कुंभ मेले में शिरकत करके शुरका के साथ मुलाकात की। मेले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कश्मीरी पंडित शिरकत कर रहे हैं। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने इंतजाम का जायजा लिया और तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वो श्रद्धालुओं के लिए तमाम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने कल तालीमी सेशन 2026-27 के लिए बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी जम्मू और श्रीनगर मराकज पर मुनक्किद किया। यह टेस्ट कश्मीर डिवीजन में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जम्मू डिवीजन में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन गांधीनगर जम्मू में मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से 1684 उम्मीदवारों ने शिरकत की। क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर आईपीएल 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रब 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आदाब, یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی آز نو دلی اندر میانمار کس صدر یو من آنگ ہینگس ست ملاقات کران۔ کت بات دوران یہ دونوین ملکن درمیان تاریخی تو تہذیبی تعلقات مزید مستحکم کرنس پہ غور کر۔ میانمار تو بھارتس درمیان تعلقات ہند تمام پہلو بشمول سکیورٹی تو رابطہ کاری ان کت بات من زیر بحث۔ تہ پو یاد زی میانمارک صدر اس بٹوار دہ بھارت کس پانچن دہن ہندس دورس پہ گیا بہار وت مت۔ جموں کشمیر منشیات کی بدت نش پاک کرنا باپت اخ ہاتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شدبد سان جاری تو اختی سے منشیات ڈھانچہ ختم کرنے تو ات بدتس من ہین آمت نوجوان ہز باضابات کری باپت ہر ممکن اقدام کرنے۔ آز آئی جنوبی ہندس کلگم ضلع اندر منشیات مخالف اخ بھارت پاد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت من منعقد کرنا۔ یہ تقریب سپز بس سٹینڈ لار منعقد یت درست ضلع کو مختلف علاقوں پہ آمت لوکو بھارت تعداد من شرکت کر۔ ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام۔
0: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ۔

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय दिन के 1 बजने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24

0: राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार चार सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीट, झारखंड में दो सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The president of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahavar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the president of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99%.

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
3: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
4: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
3: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक,

0: और भावना वर्मा।
1: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना।

0: और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
1: जी
0: अब ये विद्यालयों में हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
1: जी
0: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो,
1: जी
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
1: जी
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
1: जी
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे? लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
1: जी
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी
0: है। ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी,
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी,

0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी।
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
1: जी।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी।
0: 5वां उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो,
1: जी।
0: दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप
1: जी।
0: चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात
1: नहीं
0: नहीं समझ
1: सुनेगा।
0: पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना
1: बिल्कुल
0: कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
1: जी
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का
1: इस्तेमाल
0: इस्तेमाल
1: करते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा

0: हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ की साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें,
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से
1: जी
0: मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है,
1: बिल्कुल
0: गूगल पर
1: बिल्कुल
0: जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT,
1: जी
0: आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।

0: जी, एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से,
1: जी
0: एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियाँ, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है।
1: जी
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: तो ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात
1: जी
0: की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से
1: जी
0: हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी
0: की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए,
1: जी
0: आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
0: साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और
1: जी
0: सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी,
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: बोलो
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। समय 1:50 होने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इक्तसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें बरामदात से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। और हांगकॉन्ग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी राबतों को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत और म्यांमार के दरमियान वसी तर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में म्यांमार के सदर से मुलाकात की थी। म्यांमार के सदर ने म्यांमार भारत कारोबारी फोरम से भी खिताब किया था। वो भारत के 5 रोजा दौरे के तहत हफ्ते के रोज बिहार के गया पहुंचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारियों और सनतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसियों के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन आउं लाइन के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात के मजीद

0: हफ्ते कम होने का इम्कान है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारत ओमान जामे इख्तसादी शराकतदारी मुआहदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तसादी और कलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इक्तसादी और अवाम से अवाम के दरमियान रबते हैं, जहां तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं। 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और JDS के रहनुमा HD देवेगौड़ा, मरकजी वजीर और BJP के लीडर जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनकी रुकनियत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। होटलों, रेस्तरां और दीगर कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 4 बड़े शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये का इजाफा किया गया है। घरेलू LPG सिलेंडर की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये का इजाफा किया गया है और अब ये 3,113.50 रुपये का मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 43.50 रुपये बढ़ गई है और वहां कमर्शियल सिलेंडर के लिए 3,067.50 रुपये देने होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर RN रवि ने कोलकाता में लोक भवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खिदमात टैक्स GST की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और ये 1,94,000 करोड़ रुपये से तजावज कर गई। सामान और खिदमात की फराहमी में बेहतरी, नीज दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रुपये थी। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कूरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। मस्कूरा स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसान कर्जों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौकों को यकीनी बनाकर PM स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मस्कूरा स्कीम के तहत सूद में सब्सिडी और कर्ज गारंटी मदद के साथ 3 मरहलों में 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए के कर्जे फराहम किए जाते हैं। इस पहल से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा मुतालिक अफराद को फायदा हुआ है। मस्कूरा स्कीम के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। स्कीम के तहत 55 लाख से ज्यादा अफराद डिजिटल तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर मुस्तफीद होने वाले अफराद ने 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 8,96,000 करोड़ रुपए है। PM स्वनिधि स्कीम के तहत मुतालिक अफराद को डिजिटल कैश बैक तरगीबात और सूद में रियायत के जरिए तकरीबन 800 करोड़ रुपए भी मौसूल हुए हैं। स्कीम की मुद्दत मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय दिन के 2:30 बजने वाले हैं। हमारे अगले ऐलान का ज़रा सा इंतज़ार फरमाइए।

ये छा आकाश मनी श्रीनगर सेवन दो चढ़ाई बजे वली बोजो छा कर तरो पेश करन गुल अख्तर तो यिंद सथी वली बोजो मनीष कम कलामे रहमान दारियल।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमिद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज की निशस्त की और सुनवाते हैं आपको इस निशस्त का ये पहला नगमा, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

जी फौजी भाई, यो किशोर कुमार की आवाज़ में अपने सुना फिल्म अनामिका से ये नगमा। दोस्तों आइए सुनते हैं अगला नगमा फिल्म बम्बई का बाबू से, जिसे आवाज़ें दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

फौजी भाइयों, आइए अगला नगमा सुनते हैं। फिल्म हवस से, और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। सावन कुमार के लिखे बोल हैं और इसे संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।

0: फौजी दस्तों नगमों का ये सफ़र फ़िलहाल जारी रहेगा। हम पहले लौटते हैं इस वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: फौजी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों आइए सुनते हैं अगला नगमा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तीसरी मंजिल से। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये नगमा है और इसे धुन से सजाया है आरटी बर्मन ने।

फौजी दोस्तों, आपको एक बार याद दिलाते चले कि इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है फौजी भाइयों के लिए। जी दोस्तों, जब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं फिल्म जंगली से लता मंगेशकर की आवाज़ में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन से सजा ये नगमा।

थे दोस्तों, इस नगमे को आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। दोस्तों आइए आखिर में सुनते हैं फिल्म कस्मे वादे का ये नगमा, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामीन 3:50 हुए हैं। पेश है हमारी यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं आरिफ हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर के दरमियान दोतरफा मीटिंग का इनेकाद। अहम शोबों में शराकतदारी को बढ़ावा देने के लिए तबादले ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में कुलगाम में पद यात्रा मुनाकिद। मुनशियात का खात्मा करने का दोहराया अज़्म। कई अरकान कानून साजिया श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। अब पेश हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सदर यू मिन ओंग हिलेंग के साथ दोतरफा मीटिंग करके दोनों मुल्कों के माबैन रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टरों में इश्तराक को बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। म्यांमार के सदर आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। नीज़ हमें नौजवान पौध की हौसला अफजाई करके अपने अफराद खाना को इस लानत से बचाना चाहिए। आज कुलगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुहिम लोगों की मुहिम है और वालिदैन असातिज़ा मजहबी लीडरों और रजाकारों ने 51 रोज पहले शुरू की गई इस मुहिम में इंतजाम के साथ शाना बशाना काम किया।
2: इस कार्रवाई के दौरान 50 दिनों में 923 FIR दर्ज की गई है। लग से दर्ज 1000 से ज्यादा इस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। PMDPS के तहत 56 से ज्यादा ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। ऐसे ड्रग पेडलर्स जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस हासिल था, एक SOP बनाकर उन्हें भी निरस्त किया जा रहा है और लगभग 600 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। 124 पासपोर्ट रद्द करने की रिकमेंडेशन भी दी गई। ड्रग की काली कमाई से खड़े किए गए नार्को पैलेस को पुलिस लगातार अटैच कर रही है और कठोर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है।
1: वाजह रहे कि 11 अप्रैल को शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक ड्रग स्मगलरों के खिलाफ 923 FIR दर्ज किए गए, 668 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए और 1000 से जायद ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। मनुष्यात से मुतालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल को इस बिदत से छुटकारा दिलाने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक तालिबा सैयद मुजैना मेराज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: हमारे माशरे में फैलता हुआ नशा नौजवान नस्ल के ख्वाबों और मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है। बहसती

0: उनकी है।
1: कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ असम्बली कमेटियों के चेयरमैन के साथ एक मीटिंग की और उन्हें उनके कामकाज और उनकी जिम्मेदारियों से रूशनास कराया। इस मौके पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि असम्बली की कमेटियां सरकारी स्कीमों की अमल आवरी, रकूमात के मुनसिफाना तसरफ और दीगर पहलुओं में जवाबदेही लाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने खुशीपोरा HMT श्रीनगर में अराजी के घपले के एक मामले में मुबैना तौर मुलावस होने की पादाश्त में मेराजुद्दीन खांडे और शबीर अहमद खांडे नामी दो मुलजिमों और उस वक्त के पटवारी के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन सहपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडिया वेव 268.1 पर। समीन सपहर के 4 बज चुके हैं। समाप्त करें आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: नस्ल के ख्वाबों और मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है। बहसते स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, मेरा मानना है कि सरकार का नशा मुक्त अभियान एक काबिले सताइश और उम्मीद अफजा कदम है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत, निगरानी, रहनुमाई और काउंसलिंग के जरिए इस नासूर से हम अपने माशरे को साफो पाक और महफूज बनाए।
1: अज श्रीनगर बिच कई अरकान कानून साजिया वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मिले और उन्हां को अपने हल्कियां दी तरक्याती जरूरतां और लोकां दे पेश आए वाले मसलियां दी जानकारी दित्ती। उन्हां सुन एमएलए बांडीपोरा निजामदीन भट्ट और एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी शामिल हैं। वजीर आला सुन उन्हां को यकीन दवालिया कि सारियां मुश्किलां ते मसलियां को मरहलावार तरीके नाल हल कीते गए सी। इधर वजीर आला सुन जम्मू कश्मीर नाल तलक रखे वाले हुजाज किराम दी सऊदी अरब तो वापसी दे दौरान द सामान हुजाज दे नाल ही आने उपर अमल सामने आ रही दुश्वारियां दा मामला शहरी आवाबाजी दे मरकजी वजीर नाल चाया। वजीर आला सुन आखे कि हुजाज किराम दा सामान उसी परवाज बिच श्रीनगर पहुंच गया चाहिए जिस बिच ए हुजाज किराम आप श्रीनगर तो सफर करने वाले होवन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख बिच आज चीफ जस्टिस अरुण पिल्ले के एजाज बिच फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया। वाजह रहे कि जस्टिस अरुण पिल्ले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की हसीयत नाल तरक्की दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सारिया जज साहबान के अलावा अदलिया, पुलिस, इंतजामिया के कई आला अफसर भी मौजूद से। तकरीब पर जस्टिस संजीव कुमार सुन अलविदाई खुतबा पेश किया और चीफ जस्टिस के बेमिसाल जुडिशल कैरियर और सिफतों को उजागर किया। चीफ जस्टिस सुन इस मौके पर सारिया हुजाज साहिबान, वकीलों, जज साहिबान और बाकी अमले का शुक्रिया अदा किया। पिछले सिक्योरिटी एहलकारों नाल इनके एजाज बिच गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किते गया। एक खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। खबरें तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हो। जम्मू कश्मीर बिच उसातिजा बरादरी बिच TET दे तालुक नाल काफी तशवीश दिखे को मिल रही। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सुन आख्या कि इस मसले का TET मनकद करने नाल उसातिजा दे मफाद को नुकसान पहुंच सकता। इस मामले को कहकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम दे चेयरमैन शौकत अली बेग सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या।
2: RET एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ है पार्लियामेंट थ्रू, तो इसमें TET का मामला भी आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में TET इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2019 में। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया इस एक्ट को अप टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में है वो बिल्कुल जो तब थे जो गवर्नमेंट थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है अपॉइंटमेंट्स हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है। ये जो नए रिक्रूटमेंट होंगे जो 2019 से आगे रिक्रूटमेंट होंगे जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको TET उनके लिए मैंडेटरी अगर आप रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पहले किसी सिस्टम के जरिए आए हुए हैं उन पे ये लागू करना ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है उनके साथ।
1: जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शजात अहमद कुरैशी सुना आख्या कि फरीजा हज अदा करने के पिछे जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला कल तो शुरू हो रहा। इस सिलसिले में तमाम इंतजामों को आखिरी शक्ल दी गई। इस हवाले नाल जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शजात अहमद कुरैशी सुन आकाशवाणी श्रीनगर न्यूज नाल गल्लां करदे होया आख्या।
3: वापस आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हुजाज किराम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, चौथी 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हुजाज किराम हर फ्लाइट में होंगे, तो हुजाज किराम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट से पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। एक हमारी हाजी साहिबा जो थी उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड

0: ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी वजह से उनको अरफे के दिन ही उनकी सर्जरी थी, तो वो उनका वकूफ अरफात ना हो पाया। बाकी सब आजमीन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज करके अब वापसी उनकी है।
1: मरकज विच एनडीए हुकूमत दे 12 साल पूरे हो गए। मरकजी सरकार सुन इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत विच आम लोगों की फलाह व बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू की थी, जिन्हां विच आयुष्मान भारत स्कीम भी शामिल है। सारे मुल्क विच बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम को फायदा हासिल करके तिबी निगहदाश ती मियारी सहूलियात हासिल कर रहे। इस बारे विच एक आम शहरी सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होए कुछ इस तरह आख्या।
2: मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूं। हमें यह कहना था कि एनडीए सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना होता मुमकिन है वो न बच सकती। लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है और मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है, और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्र गुजार है, बहुत ज्यादा शुक्र गुजार है। मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट।
1: ऐसा खबरनामा असा को दियो इजाजत, खुदा हाफिज।
3: ये आकाशवाणी हम श्रीनगर स्टेशन समीन 4:03 सपद वली बोजो उछा कर तो रो पेश करन गुल अख्तर ती हिंद सती वली बोजो मनीष कलामे लस खान फिदा।

Дорогі хіджират!

0: Saben todo eso, chakratru bozan, fancares gulag terte seti, y manes bozuta hikalame las khan fidal. Ya Akashvani Srinagar ki awaz hai, sham ke 5 baj chuke hain, samat karein aaj ka gojri program. Program se pehle ek chota sa waqfa.
1: Commercial Broadcasting Service Srinagar. आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: जी अच्छा, पहली बार तम जब स्टेडियम आया, ये तशरीफ ले आया, तो थारा जज्बात के था क्योंकि उस वक्त का रेडियो
1: स्टेडियम था। पहली बार रेडियो कश्मीर जम्मू ते मैं प्रोग्राम में शिरकत करी थी, क्वीज प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम में, तो हूँ MM कॉलेज जम्मू को तालिब इलम थो, तो उस प्रोग्राम में शिरकत करी थी गालबन 1978 या 79 के आसपास। तो उसके बाद फिर रेडियो नाल एक तालक जड़ो तो बन गयो जी। उसके बाद वो फिर 1982-83 में कश्मीर आयो अपना पंजाब का सिलसिला में, J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में एडिटोरियल स्टाफ के विच एज रिसर्च असिस्टेंट मेरी तैनाती हुई। तो फिर ईद का प्रोग्राम के नाल भी जुड़िया रहा, जम्मू के नाल भी जुड़िया रहा, फिर दूरदर्शन तो दूजी जगह तो प्रसार भारती का जड़ा भी प्रोग्राम था उनमें शामिल होता।
2: आगे हम एक नगमो सुन लिया।

0: एक सवाल थारे ते पूछूंगा जिसमें दो सवाल होगा और तमना कनी कनी इसको जवाब देना है। एक तो यो क्योंकि तम जज रहे हैं काफी सारा ऑडिशनस के बीच तमने जज काम की और तमने इवोल्वेट की रिजल्ट की लड़का ना हमारा नौजवाना ना लड़कियां ना जी हमारी बच्ची गोजरी जबान ना मुंसलिक उन्होंने सुनियो उन्होंने को इंटरव्यू देखियो उन्होंने की गल सुनी उन्होंने को गोजरी के बारे में मालूम देखी फिर तम मोस्ट थारा मुशायरा के बीच साहिब सदर रहे हैं और उतने थारे सामने मारे जरा नौजवान शौरा हैं या अदीब हैं उनकी राइटिंग ना तमने परख्यो ये दो अलग अलग चीज़ें राइटिंग का वाला ना लिखित का वाला ना तम गोजी को मुस्तकबिल के देखें और ब्रॉडकास्टिंग का लिहाज ना मारा नौजवाना की दिलचस्पी ना तम के देखें और आगे जाके यह चीज़ कित पहुँचने वाली है मतलब थारी दूरअंदेशी केक है थारो विजन केक है इनसाइड केक है
1: जित तक इसकी रिकॉर्डिंग या ब्रॉडकास्ट की या टेलीकास्ट की गल है तो लोग काफ़ी हद तक इसके बीच दिलचस्पी ले इसमें कोई शक नहीं लेकिन उतनी दिलचस्पी उन्नी रही
0: ठीक।
1: ये सोशल मीडिया जड़ो है उसने ये चीज़ जड़ी सारी समेट के अपना तौर पर और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जड़ी है वह गिरावट जड़ी आ रही है जड़ी ऊँ महसूस करूँ वह यह है कि मारा लिखण वाला जड़ा जड़ी चीज़ें अपलोड करें वे उस किसी उस्ताद ना नहीं दसता वे खुद उस्ताद बन के उन चीज़ें ना करें कुछ बहुत अच्छा लड़का लिखण वाला नौजवान तबको जड़ो है इतना अच्छा है कि शायद पहला भी इस किस्म की इतनी मयारी शायरी नहीं हुई वे इस हद तक है लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि वे नो बगैर उनमें वजन नहीं हो तो उसमें सिनफ को पूरा इम्तियाज नहीं हो तो, जी जी फर्क है तो उन चीज़ों ने नहीं दसता उन्होंने किसी उस्ताद तो मदद लेनी चाहिए उन्होंने दसना चाहिए अपनों कलाम तो उस तरह करना चाहिए लेकिन यह है कि मायूसी वाली गल नहीं अल्लाह उन्होंने और और इंशाल्लाह वे आगे भी तरक्की करेंगे और दूसरे सवाल थारो तो के ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला लोग सुने प्रोग्राम तक यूट्यूब या दूजी चीज़ा कर क्योंकि प्रोग्राम हूँ रेडियो तक महदूद नहीं ना रही ये मोबाइल वगैरह के जरिए भी प्रोग्राम

0: आखिर में कोई ऐसा पैगाम जो तुम हमारा सामी ना देना चाहता हुए या हमारा नौजवान ना देना चाहता हुए जोड़ा इससे थोड़ा दूर जेन लगा हुआ कितने ना कि मतलब अपनी जबान से दूर जेन लगा हुआ इसके नाल जुड़ी हुई जी ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग या लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं इनते दूर जेन लगा उन्होंने के पैगाम देना चाहेंगे कि के करना चाहिए उन्होंने
1: पैगाम हूँ के दिवंगो बहरहाल सारी दुनिया जड़ी है मेरा तो बहुत सियानी है बे खुद अपना पैगाम अपना तौर पर कर सके लेकिन हूँ यह गल कहूँ कि मारा लोग जड़ा है गुजर या गोजरी के नाल जुड़िया जड़ा लोग है मारी पसमानदा कौम रही है बड़ा ठेला देखा है इन्होंने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है बड़ी गुरबत देखी है तो इन सारी चीज़ों ने मद्देनज़र रखता इन लोगों ने मेहनत करन की लोड़ है और इतनों के जड़ा लोग अगे निकल गए उन तक पहुँचन की जरूरत है जरूरी है कि वे अपनी जबान ना अपनी सकाफत ना अपने नाल ले के चलें और अपनी जबान का सिलसिला में संजीदगी नाल और मेहनत नाल काम करन की लोड़ है वे चीज़ आज गोजरी जड़ी है वह कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बनाई जा रही है तो इसकी वे चीज़ जिनकी लिटरेचर में या स्टडी मटीरियल बच्चों ना प्रोवाइड करने वास्ते जिन चीज़ों की कमी है उन कमियों ने पूरा किया जाना चाहिए वे इसनाफ जिनमें मारा को मवाद घट है उन्होंने पूरा किया जाना चाहिए सिर्फ कहानियां तक सिर्फ शायरी तक अपना अपना महदूद नहीं रखना चाहिए मजामी लिखना चाहिए कहानी लिखनी चाहिए और नवा नवा टॉपिक और इसके वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ जी शवेद साहब हम कहूँगा कि मतलब
0: बेशक
1: हाँ खाली इसके नाल उन्हीं कहते कि सोशल मीडिया पर या इसके ऊपर या नेट के पर हर चीज़ जड़ी है वह दस्तियाब है लेकिन किताबी मितालो जड़ो है उसके नाल जो कुछ बच्चा गहन कर सकें शागिर्द जड़ाएँ भी हासिल कर सकें इन सोशल मीडिया या इन दूजी चीज़ों के नाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये चीज़ नहीं हासिल हो सकती तफसील तफसील है और डिटेल में जानो चाहिए किताबन पढ़ना चाहिए अपना मजमून पर जिस पर वह कलम जामी उस पर अबूर हासिल होना चाहिए तो उस तरह उनकी चीज़ भी मयारी बनेगी वे अच्छो लिख सकेगा और उन्होंने दूजा ना पढ़ना चाहिए और अपनों इस किस्म की तारीर होनी चाहिए कि दूजा मजबूर में उनकी तारीर ना पढ़ने वास्ते उन्होंने ट्रांसलेट करने वास्ते इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है क्योंकि एक चीज़ कहूँ कि जबाना को एक सिलसिलो एक है गिव एंड टेक को लेन देन
0: सोर्स एंड टारगेट को
1: हाँ तो वह जबान जिसके बिचों गिव एंड टेक को जड़ो है वो लेन देन को सिलसिलो जड़ो अल्फाज ना लेन को मुहावरा ना लेन को ट्रेंड्स ना हासिल करन को वो जद ख़त्म हो जाए तो वह समझो कि वह जबान जड़ी है डेड लैंग्वेज वाले पास से सफ़र करने लगी उसको मुस्तकबिल कोई ज़्यादा
0: तुमने सही फरमाया और दुनिया में 563 जबान ऐसी हैं जिड़ी नापेद होगी खत्म होगी और उनको वजह यही थी कि उनके बीच लिटरेचर नहीं तो बोलने वाला उतना संजीदो नहीं लेन था और उतना दूजी जिड़ी तरक्की याफ्ता जबान है उन्हें अपना अपना
1: डाल छोड़ा एक गल तुमने कहना चाहूँ कि गोजरी जड़ी है वह बर्रे सगीर मत है ही है वो बर्रे सगीर की हद तक की गोजरी ना कहूँगा कि इसके बीच इतना डायलैक्ट से इतनी वेरिएशन से कि मीना नहीं लगता किसी दूजी जबान में तो इस सारा जितना भी लिया जाए जित जित बोलिया जाए उनके बीच जो जो अच्छी चीज है उन्होंने समेट के एक
0: गुलदस्तो
1: बनाने की भी लोड़ है एक मरकजी रूप जड़ो है वो दितो जाना चाहिए ताकि किसी ना भी इस तू ओपरिया ना आवे यो नहीं कि अपनी जी मेरी है तो मैं ना खत्म करके तो गोजरी वास्ते काम करने के
0: लिए बेशक मारी मैंने खत्म करके मारी
1: सांझी कर सांझी मारी जबान मारी मेरी जबान ना
0: ठीक
1: मारी जबान
0: तुमने बहुत अच्छी गल की थारी से ठीक नहीं थी उसके बावजूद तुम मारी दरखास्त पर मारा स्टेडियम आया बहुत प्यारी प्यारी गल सांझी की अपना जड़ा भी थारी याद में थी वे जड़ी थारी मेमोरीज के नाल जुड़ी चीज़ इतमारे ना सांझी की मारा सामीन तक पहुँचाई अल्लाह थारो सायो तादेर मारा सिर पर कायम रखे इंशाल्लाह फिर तम ना तकलीफ देंगा इत ते आज का प्रोग्राम नाम इतने ख़त्म करा थारो बहुत बहुत शुक्रिया
1: थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया
2: सामीन आगे पेश है यू नगमो

अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। मीडियम में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनेंगे। पहले मकामी गोजरी खबरों का बुलेटिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

بل هم في شك يلعبون

تو گل اسیر

0: ગમીભાઈ સ્પનન પ્રોગ્રામ બોઝાન, પ્રોગ્રામિક પ્રોડ્યુસર છે વસીમ ફારૂક. ઈશા આકાશવાણી શ્રીનગર, સોન દુઈ મેલાન પૂજ્યું.
1: આકાશવાણી શ્રીનગર. અપની ઘડિયા મિલાઈએ, શેરબીન ટાઈમ, શામ કે 7 બજે.
2: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट. मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट. अपनी तामीरात दिल से बनाइए.
1: शहरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे. आज के खास मौजूदात हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम आज कुलगाम पहुंची.

0: आठवां पे कमीशन श्रीनगर पहुंचा, इजय के वफ्त ने मुलाकात की। किश्तवाड़ जिले की अधूरी वाटर सप्लाई स्कीम है। और अवंतीपुरा को वंदे भारत के लिए हॉल्ट स्टेशन मुकर्रर किया जाए, अवाम का मुतालबा। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: होली का ना अलग ही मजा है, लोरी ना मिठाई खाओ।
7: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
8: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
9: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
8: अच्छा भाभी।
9: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
8: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
10: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
10: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मेगा पद यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसकी क्यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस सिलसिले में कुलगाम कस्बे में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इनमें ताजिर, तलबा व तालिबात, खिलाड़ी, वकला, सामाजिक कारकुन, सियासी नुमाइंदे और दीगर कई शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। इस मौके पर LG मौसूफ ने अपनी तकरीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम को एक अहम संग मील करार देते हुए कहा कि 100 दिन के अंदर बेशक नशे की बिद्दत को जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंकना मुमकिन नहीं है, ताहम जिस जोश व जज्बे और संजीदगी से लोग इससे वाबस्ता हो चुके हैं उससे कभी उम्मीद पैदा हुई है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर नशे से बिल्कुल पाक होगा। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
13: जिला कुलगाम में मंशात के खिलाफ जारी नशा मुक्त भारत अभियान आज उस वक्त एक अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गया जब हजारों की तादाद में लोगों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मुनक़दा अज़ीम-ओ-शान मेगा पद यात्रा में शिरकत

0: मुतहद करके मंशियात के खिलाफ मुतहद होकर जुदोजहद जारी रखने का इज्म का अदा किया। ये मेगा पद यात्रा जनरल बस स्टैंड लारू से शुरू हुई और घंटाघर के करीब खिताम पजीर हुई। शुरकाने पूरे रास्ते में मंशियात के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए नौजवान नस्ल को इस समाजी बुराई से बचाने का पैगाम आम किया। मेगा पद यात्रा में जिला से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन, ट्रेडर्स फेडरेशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, सरकारी मुलाजमीन, स्कूली तलबा, रजाकार तंजीमों, मुख्तलिफ सियासी जमातों के मेंबरान और आम शहरियों की गैर मामूली शिरकत ने इस बात का वाजह सबूत दिया कि कुलगाम के लोग मंशियात के खात्मे के लिए एक प्लेटफार्म पर मुतहद हो चुके हैं। काबिल जिक्र है कि जिला तरक्याती कमिश्नर शहजाद आलम और दीगर जिला अफसर गुजशत कई रोज से आवाम से मेगा पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे थे और आवाम ने आज इस अपील का भरपूर खैर मकदम करते हुए इस प्रोग्राम को एक मजबूत अवामी बेदारी और समाजी शोर की तहरीक में तब्दील कर दिया। जिला इंतजामिया की तरफ से कुलगाम कस्बा और उसके मुनिका अतराफ को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जबकि लारू के वसी बस स्टैंड में आवाम की सहूलियत के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक की बिला खलल नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए पहले ही खसूसी एडवाइजरी जारी की गई थी। बेहतजा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मंशियात के खिलाफ इज्तिमाही जुदोजहद की जरूरत पर जोर दिया और नौजवानों को इस लानत से महफूज रखने के लिए समाज के हर तबके से फाल किरदार अदा करने की अपील की। इस मौके पर गवर्नर मौसूफ ने कहा कि इंतजामिया माशरे से मंशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरजुम है और जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी तकरीर में कहा कि मंशियात से मुतलिक 923 FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा मंशियात परोशों और स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम करते हुए 600 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख किए गए हैं, जबकि 124 अफराद के पासपोर्ट मंसूख करने की सिफारिश की गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह पूरे माशरे की मुश्तरक जिम्मेदारी है, जिसमें खानदान, तालीम अदारों, मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात से दूर रहे और एक सेहतमंद, महफूज और खुशहाल माशरे की तामीर के खातिर हुकूमत की इस मुहिम का साथ दे।
1: आतंकवाद का सबसे अधिक दर्द झेला, उन्हें निशाना बनाया गया, बकाया गया, नशे के दुष्चक्र में नौजवान साथियों को फंसाया गया, लेकिन पिछले 51 दिनों में मैंने उनकी आंखों में अपने आत्मविश्वास देखा है। नौजवानों और बहनों को अपनी गरिमा, अपने सपने और अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध होते हुए देखा है। हम आप सबके सहयोग से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे नौजवान नशे के गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त हों, आवाम की मुख्य धारा में वापस आवे और जम्मू कश्मीर को एक रोशन कल की ओर ले जाने के लिए ताकतवर बनाए। कुलगाम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ड्रग के खिलाफ यह जंग केवल छापों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी। हम तीन महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला है सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, सीमाओं पर मौजूद तस्करों से लेकर हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव में जहर बेचने वाले पेडलर्स के नेटवर्क को नस्तनाबूद शिद्दत से किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख काम है आवाम में जागरूकता पैदा करना। जिला प्रशासन, अनेक परिवार, स्कूल, सामाजिक और धार्मिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता आवाम को ड्रग के खतरों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं और मैं अपेक्षा रखूंगा इस कुलगाम में भी जिला प्रशासन ने जो समितियां गठित की हैं, सभी भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तीसरा महत्वपूर्ण मोर्चा है रिहेबिलिटेशन का। मैं जानता हूँ चुनौती बहुत, कुलगाम प्रशासन ने जो प्रयास किया है मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ। नशे से पीड़ित उन्हें भी हक है इज्जत से जिंदगी जीने, और इसलिए जो लोग ड्रग के अंधे जाल में फंसे हैं उन्हें अपराधी मानने की जरूरत नहीं, वो तो वास्तव में व्यक्ति है। हमें उनके साथ इज्जत, हमदर्दी और एहतराम के साथ व्यवहार करना होगा। 100 दिन का ये अभियान एक जागृति पैदा करने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए शुरू किया गया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी प्रशासन और पुलिस के साथ पूरी शिद्दत से जुड़ करके नशा को जम्मू कश्मीर से बाहर करने में एकजुट हो।
0: इस मौके पर MLA कुलगाम मोहम्मद जुफ्तारी गामी

0: मंजूर किया जाए।
1: शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी, शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय 8वें तनख्वाह कमीशन के अरकान जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर हैं। तनख्वाह कमीशन के दौरे का मकसद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ मुलाजमीन अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगुशुनीद करना है, ताकि इस दौरान उभर आने वाली तजावीज को मरहूज नजर रखा जा सके। इस सिलसिले में आज ईजैक के एक वफद ने ईजैक के सदर फयाज अहमद शबलम की क्यादत में 8वें तनख्वाह कमीशन से मुलाकात की। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फयाज अहमद शबलम। फयाज साहब, आज जो आपने मुलाकात की 8वें तनख्वाह कमीशन के अरकान से, तो क्या आपकी मांगे रहीं, क्या आपकी तजावीज रहीं और कैसा रवैया रहा पे कमीशन के अरकान का?
4: इशफाक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया ताकि हम जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को इनके साथ उठाए गए मामला से बाखबर रखें। और हम 8वीं तनख्वाह कमीशन के मेम्बरान के भी शुक्र गुजार है कि उन्होंने हमें मुलाजमीन के मामला के हवाले से अपना मौकफ रखने का मौका दिया। अगर ईजैक ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स पहले ही कमीशन को पेश किया था, जिसमें तनख्वाहों में मुनासिब और मुनसिफाना इजाफा, सर्विस शराइत में बेहतरी, पेंशन और रिटायरमेंट फवायद के तहफ़ अलाउंसेस की माकूल निशान नजरसानी, मुलाजमीन के लिए समाजी और माली तहफ़, हर तरह के आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली और उनके लिए कम से कम उजरत मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने पर भी बात होकर उसको अमलाने के लिए पुरजोर मुतालबा किया गया, और मुलाजमीन व पेंशनर्स की फलाह बहबूद के लिए इकदाम करने पर हमने तजावीज रखे जो कि कमीशन ने गौर से सुने और उन पर मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल हुआ, जिस पर हम एक बार फिर मुलाजमीन के तरफ से 8वां तनख्वाह कमीशन और उनके मेहमान का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करते
1: हैं। यानी आपकी जो इंटरेक्शन हुई कमीशन के अरकान के साथ, उसमें आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा या उनकी बात से लगा कि पॉजिटिव रिस्पांस था?
4: मैं फोर्थ पे कमीशन में ही काम कर रहा हूँ मुलाजमी की बका के लिए, फोर्थ पे कमीशन से, और ये पहली बार हुआ कि यहाँ कमीशन 8वें कश्मीर आ गया। जम्मू कश्मीर में ये नहीं आते थे, ये पहली दफा आया है। और इस तरह सुना है कि बिल्कुल बड़ी खंड पेशानी से पेश आए। उनका ये मानना था कि हमारे जो हमने अपने तजावीज पेश रखे, मसाइल पेश रखे, तकरीबन उन्हें हमारे साथ इत्तेफाक किया, और मैं पुरुमेद हूँ जो हमारे जो मामला थे, जो हमारे मसाइल ये बिल्कुल इस पैकेज में क्लियर किए होंगे।
1: शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे ईजैक के सदर फयाज अहमद शबनम। समन, किश्तवाड़ जिले के दर्जनों इलाकाजात में लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मौसूल इतिलात के मुताबिक जल शक्ति महकमे ने कई वाटर सप्लाई स्कीमों की तामीर का काम दरदस्त तो लिया हुआ है, ताहम जाने किन वजूहात के बिना पर यह काम मुख्तलिफ मराहिल में मौलक हो चुका है। इस सूरत हाल के नतीजे में स्कीमों पर अब तक खर्च किया गया रुपया भी जाया होने लगा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर स्कीमों को तकमील तक पहुंचाने के लिए माकूल फंड्स दस्तियाब ना थे तो फिर स्कीमों पर काम शुरू करने का मकसद ही क्या था। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव।
5: यहाँ के लोगों को कई कई स्कीमों से पानी मुहैया करने के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन जमाना गुजरता गया, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न हो पाए। इन स्कीमों से एक स्कीम नयगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम को एक साबिक मेंबर असेंबली और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट ने काफी कोशिश के बाद मुकम्मल करवा के न सिर्फ किश्तवाड़ कस्बा बल्कि मुल्क का देहात और दीगर इलाकों को पानी मुहैया कर

0: आया, पानी जरूरत के मुताबिक फिर भी न मिलने की शिकायत शहरबीन को कई इलाकों से मिलती रहती हैं। कहीं कहीं मर्द खवातीन धरने और मुजाहरे भी करते रहे हैं। अब कुछ वक्त से चूंग की कस्बा और बुनेका देहात के लोगों को तकरीबन जरूरत के मुताबिक पानी बारी बारी से मिल रहा है, यानी पानी की फराहमी में काफी बेहतरी आई हुई है। अगर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो नागजिनी के अलाक पट्टी मोड़ और अलाका प्यास की आवाम को शिकायत है कि इन इलाकों में टैंकियां तो तामीर की गई हैं, लेकिन इन टैंकियों में काफी साल गुजर जाने के बावजूद पानी नहीं डाला गया है, बल्कि अमली तौर पर इन टैंकियों को प्यासा ही रखा गया है। जब टैंकियां खुद प्यासी हो तो लोगों को क्या हाल होगा, अयाशी बात है। लोग कदीम जमाने के रीत रिवाज को जारी रखते हुए दूर दूर जाकर चश्मों से पानी ले आते हैं। इलाका पाडर के इंतहाई पहाड़ी गाँव सजार में हौज की तामीर के लिए बुनियादें खोदी गई हैं, न हौज तामीर किया गया है और न ही इसकी तामीर का कोई अंदाजा लग रहा है। यहाँ तो नालियां जेर जमीन भी नहीं की गई हैं, पानी डालने की तो बात ही नहीं। यहाँ कुंडल जाड़ वगैरह तक नालियां पहुंचा दी गई हैं, जो रास्तों में दर बदर और छाड़ रही है। लेकिन पुरसा ने ऐसे ही एक दूर दूर उत्तादा पसमानदा पहाड़ी मगर खूबसूरत इलाका वाड़वन के पश्मीना में जगनाड़ में 10,000 गैलन का एक होल तामीर किया गया है, जिसमें पानी डाला गया जो साथ ही रिस रिस कर निकल रहा है। ये निकलता पानी अब करीबी आबादी के लिए खतरा बन रहा है। ऐसे ही वहाँ प्रगनाड से पानी लाकर शान महला को मुहैया करना था, वहाँ सिर्फ नालियां नसीब की गई है, बाकी अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। वहाँ जो हाई स्कूल है इसमें जेर तामीर बच्चे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं दूर से पानी ले आते हैं और यूं गर्मियों के ये तालीमी दिन गुजारते रहे हैं। चंद्रबनी के मुकाम पर एक टैंकी तामीर की गई है, ताहम ये टैंकी भी शदीद धूप की अभी तक मार खा रही है। नागपटना कुंदवाड़ा में मुतल्लिका महकमा ने जो टैंकी बनवाई है, आवाम के मुताबिक वो पानी डालने से पहले ही शिगाफ ज्यादा हो गई है। दूर दराज इलाका बोंजवा का इस बारे में जिक्र करना अहम है। यहाँ गुजर बस्ती पर मुश्तमिल गांव बेशिया वाली में 100 घराने बस रहे हैं, लेकिन महकमे की तरफ से पानी मुहैया करने का कोई इंतजाम नहीं। लोग नजदीकी नाले या फिर चश्मों से पानी लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पच्चा देवी गोल में एक होल को बिल्कुल सूखा रखा गया है, जबकि मसलाई का होल इंतहाई खस्ता हो गया है। इसमें काफी गंद जमा हो गई है, मगर आवाम को यही आलूदा पानी मुहैया किया जा रहा है, जिससे कभी भी बीमारी फूट सकती है। यहाँ नाली पतनाली में भी फराहमी आपका माकूल इंतजाम करने की जरूरत है, जिसकी तरफ महकमों को तवज्जा देनी चाहिए। 2024 में तामीर गुलाबगढ़ पाउडर का फिल्टर प्लांट अभी तक बेकार पड़ा है, इसमें भी पानी नहीं डाला गया है। संगना ता प्लांट सिक्किम की नसबशुदा नालियां अब टूट फूट चुकी है, लेकिन इनका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। महकमा अब भी जाग जाए तो आवाम की शिकायत का अजाला हो सकता है। साथ में महकमा के आला हुकाम को जांच करनी चाहिए कि आखिर ये टैंकियां क्रैक क्यों हो रही हैं, इनकी अदायगी रुकूम कैसे की गई है, ताकि कुछ हकाइक सामने आ सके और आइंदा सरकारी रुकूम का जिया भी न हो।
1: किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना, मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर लोगरीपुरा ऐशमकाम की एक गुजरपति में लोग तरह तरह की मुश्किलात से दोचार हैं। बताया जाता है कि इलाके में न तो माकूल तिब्बी सहूलत दस्तियाब है, न ही सड़क राबिता, जबकि इलाके के स्कूल में खेल का मैदान भी मौजूद नहीं है।
2: जनाब हम बोल रहे हैं ऐशमकाम लोगरीपुरा से, तो यह जनाब आदत ये है, हमें ना यहाँ स्कूल का ग्राउंड है, पानी नहीं होता है जनाब टाइम में। यहाँ जनाब बाकी वो कुछ काम होता है तो वो भी नहीं होता है जनाब। यहाँ रोड है, रोड जनाब ये भी पड़ा है ऐसे, गाड़ी नहीं, हमें 3-4 किलोमीटर पैदल आकर आना पड़ता है जनाब। किसी वक्त देर हो जाता है, हाँ चल नहीं सकते। मैं खुद बीमार हूँ जनाब, बिस्तरे में बैठा हूँ, जाऊँगा जनाब डॉक्टर के पास, क्या गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ से जाना पड़ता है 5 दिन तक, कि किस में जाऊँ जनाब, बड़ी प्रॉब्लम होती है सर हमें। ये आपकी मेहरबानी है क्या आप ये हमारा अगर ये आगे ये प्रोग्राम पहुँचा दूंगी।
3: हमारी तरफ से पूरे शहरबीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम हो। تو ہم اش مقام رشک البل کے رہتے ہیں جی. ہمارے جو علاقہ ہے رشک البل لوگری پورہ کا علاقہ ہے سر, اس میں پانی کی کمی ہے اور روڈ کی کمی ہے اور گراؤنڈ کی کمی ہے. ہم گورنمنٹ

0: कहते हैं हम देते हैं गुजर कमेटी को, लोगों को देते हैं, मगर हमारे गांव में तो कभी दिया नहीं है कुछ। और हमारे गांव में लोग जब बीमार होते हैं एम्बुलेंस आए या ले उसको, मगर उसमें बहुत तकलीफ होती है, हमें हमें वो ले पड़ते हैं अपनी गाड़ियों में उठा के लेने पड़ते हैं, तो वहाँ बहुत दूर जाना पड़ते हैं, हमें हॉस्पिटल दूर है। तो ये हमारी गुजारिश रहेगी सैरवीन से भी कि हमारा मसला हल किया जाए। तो हमें ग्राउंड की कमी है, हमें अस्पतालों की कमी है, क्योंकि कोई बीमार हो जाएगा तो हमारे जो है अस्पताल वो दूर हैं, तो मेडिकल है नजदीक, मगर हॉस्पिटल में तो जरूरी जाना पड़ता है इंसान को। तो ये गुजारिश होगी सरबिन की कि हमें हमारी बात के लिए गौर किया जाए, तो और हमें ग्राउंड की कमी है ये होनी चाहिए जरूरी। और ग्राउंड की तो जमीन बहुत है, जमीन की कमी नहीं है, तो अगर देंगे तो हम जमीन भी देंगे।
1: लोगरीपुरा इस मकाम की गुजरपति में लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना। इधर हजरत ख्वाजा हबीबुल्ला नौशहरी का 417वां उर्से मुबारक जुमेरात 4 जून को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जरडीबल तनवीर सादिक ने उनके आस्थान आलिया पर हाजिरी दी और वहां इंतजाम का जायजा लिया। वाजह रहे कि उर्स के रोज नमाज जहर से कबल मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी वाज फरमाएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस की सदारत में एक इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर उन्होंने वाशगाफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए वादेबंद रही है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आकाशवाणी श्रीनगर।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
13: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
12: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
13: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
12: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज। माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
13: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
12: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं हूं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर अजम और म्यांमार के सदर के दरमियान दोतरफा मीटिंग का इनकाद। अहम शोबों में शराकतदारी को बढ़ावा देने के लिए तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्यादत में कुलगाम में पद यात्रा का इनकाद। मुनशियात का खात्मा करने का दोहराया अज्म। हुजाज किराम का सामान उनके हमरा ही वतन पहुंचाया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर को मकतूब। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकार। खबरें तफसील के साथ। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग लेंग के साथ दोतरफा मीटिंग करके दोनों मुल्कों के माबैन रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करने से मुतलिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस दौरान सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टरों में इश्तराक बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। म्यांमार के सदर आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए मुनज्जम और मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। नीज हमें नौजवान पौध की हौसला अफजाई करके अपने अफराद खाना को इस लानत से बचाना चाहिए। आज कुलगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुहिम लोगों की मुहिम है और वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी लीडरों और रजाकारों ने 51 रोज पहले शुरू की गई इस मुहिम में इंतजामिया के साथ शाना बशाना काम किया।
1: धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग से एक ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गली, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया है। आवाम के हर परिवार का आज एक ही संकल्प है कि अपने गांव, अपने शहर को हमें नशा मुक्त बनाना है। मैं आपके सामने आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में खड़ा, जो आपका दर्द, आपका संघर्ष और एक सुरक्षित, सशक्त और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के सपने को साझा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं बड़े एतमाद से आज कहना चाहता हूँ कि वे जंजीरें जिन्होंने हमारे नौजवानों को ड्रग के अंधे जाल में बांध रखा था, वे अब कड़ी दर कड़ी दिन ब दिन टूटती जा रही है।
0: वाजे रहे कि 11 अप्रैल को शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक ड्रग स्मगलरों के खिलाफ 923 FIR दर्ज किए गए, 667 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए और 1000 से जायद ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। मुनशियात से मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक तालिबा सैयद मुजैना मेराज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: हमारे माशरे में फैलता हुआ नशा नौजवान नस्ल के ख्वाबों और मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है। बहसती स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, मेरा मानना है कि सरकार का नशा मुक्त अभियान एक काबिले सताइश और उम्मीद अफजा कदम है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत, निगरानी, रहनुमाई और काउंसलिंग के जरिए इस नासूर से हम अपने माशरे को साफो पाक और महफूज बनाए।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए बारामूला और हिंदवाड़ा में 4 मजीद स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अनंतनाग में नजीर अहमद डार नामी बोटेंगू इलाके के एक बदनाम जमाना स्मगलर के एक तिजारती कम्प्लेक्स को मुनहदिम किया गया। इस दौरान बारामूला, सोपोर, अवंतीपोरा, बिजबहरा और दीगर कई मकामात पर पुलिस की तरफ से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद करके अवाम में नशे के खिलाफ बेदारी पैदा की गई। कुछ दीगर मकामात पर नशावर फसलों को भी तबाह किया गया। सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि सफरे महमूद से आने वाले जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की वापसी के सिलसिले में तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल हैं।

0: आने का सिलसिला इंशाल्लाह 2 जून से शुरू होगा। पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, 6 दिन, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी, और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। जो हमारे हजाजक्राम 18 अप्रैल को गए थे 3 फ्लाइटों के जरिए, उनमें से एक फ्लाइट पहली जो है 2 तारीख को आएगी, दूसरी 3 तारीख को आएगी, चौथी 4 तारीख को आएगी। तकरीबन 145 के करीब हजाजक्राम हर फ्लाइट में होंगे, तो हजाजक्राम को जो उनके रिलेटिव होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट के दाखिले के लिए उन्हें ऑनलाइन हज कमेटी की वेबसाइट पे पास डाउनलोड करना है गाड़ी के लिए, और उस पास से वो एयरपोर्ट में दाखिल हो सकेंगे। एक
1: दरी असना, वजीराला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम की सऊदी अरब से वापसी के दौरान उनका सामान उनके साथ ही लाने के अमल में आ रही दुश्वारियों का मामला शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर किंजारा पाओ राम मोहन नायडू के साथ उठाया है। वजीराला ने हुज्जाज किराम का सामान उसी परवाज में श्रीनगर पहुंचाने की जरूरत उजागर की जिसमें यह हुज्जाज खुद श्रीनगर तक सफर करने वाले हों। इस बारे में वजीराला उमर अब्दुल्ला ने शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर को एक मकतूब लिखा है। दरियासना आज श्रीनगर में मुतादिद अरकान कानून साजिया वजीराला उमर अब्दुल्ला से मुलाकी हुए और उन्हें अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इनमें MLA बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट और MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी के अलावा MLA हजरतबल सलमान अली सागर भी शामिल थे। वजीराला ने सभी MLAs को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को मरहलावार तरीके पर हल किया जाएगा। इसी दौरान वजीराला ने आज सर्किट हाउस चर्च लैंड श्रीनगर में नव तामीर शुदा एक अकामती इमारत का इफ्तिताह किया। यह 3 मंजिला इमारत महकमे तामीरात आमा ने 781 लाख रुपये की लागत से तामीर की है। इस मौके पर नायब वजीराला सुरेंद्र चौधरी और दीगर सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। साइंस व टेक्नोलॉजी और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद सियाहती सेक्टर में नए मौके पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर बिजनेस कन्क्लेव 2026 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जुग्राफियाई और मौसमी चैलेंजों के बावजूद जम्मू कश्मीर सरमायाकारी कारखानदारी और रोजगार के लिए एक बेहतरीन मकाम है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को एक फाल तरीन टूरिज्म के मरकज में बदलने की सिमत में काम कर रही है। ज़िरात के वजीर जावेद अहमद डार ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में किसान घरों के कामकाज और दीगर पहलुओं का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत दी कि वह नई दिल्ली और कोलकाता में मौजूद किसान घरों की तजदीदकारी के लिए फौरी इकदाम करें। उन्होंने कहा कि ये इदारे किसानों के मैयार हयात में बेहतरी लाने में अहम रोल अदा करते हैं। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुलरहीम राथर ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ असम्बली कमेटियों के चेयरमैनों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें इनके कामकाज और उनकी जिम्मेदारियों से रूशनास कराया। इस मौके पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि असम्बली की कमेटियां सरकारी स्कीमों की अमलावरी, रकूमात के मुनसरफाना तसरुफ और दीगर पहलुओं में जवाबदेही लाने में कलीदी रोल अदा करती हैं। जम्मू कश्मीर UT ने पूरे मुल्क में सेंसस 2027 के तहत सेल्फ इन्यूमरेशन में 8वां मकाम हासिल किया है और UT में अब तक 6,67,000 कुंभों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी पोर्टल पर सेंसस तफासील जमा कराई हैं। यह जानकारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर और डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस अमित शर्मा ने जम्मू में मीडिया के साथ बात करते हुए दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से अपील की है कि वो एक माह तवील सेंसस अमल के दौरान इन्यूमरेटरों और सुपरवाइजरों के साथ भरपूर ताउन करें। मुल्क भर में आज से खेत बचाओ अभियान का आगाज हुआ। ज़िराअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। इस पहल के बारे में अपने पैगाम में वजीर मौसूफ ने कहा,
2: 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
1: खेत बचाओ अभियान के सिलसिले में बांडीपोरा समेत वादी के दीगर कई अजला में भी इफ्तिताही प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। MLA पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा ने आज पुलवामा कस्बे के अलावा अपने असेंबली हलके के दर्जन भर गांवों का दौरा करके

हाँ, जारी तामीर और तरक्की और बुनियादी ढांचे नीज आबपाशी की सहूलियात का बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने सभी तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में आज चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। वाजह रहे कि जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की हैसियत से तरक्की दी गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के सभी जज साहिबान के अलावा अदलिया, पुलिस व सिविल इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब पर जस्टिस संजीव कुमार ने अलविदाई खुतबा पेश किया और चीफ जस्टिस के बेमिसाल जुडिशल कैरियर और कायदाना सलाहियतों को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर तमाम जज साहिबान, वकला और दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग जम्मू का एक रोजा कन्वेंशन आज जम्मू

0: की श्रीनगर शाख में आज चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। वाजह रहे कि जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की हैसियत से तरक्की दी गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के सभी जज साहिबान के अलावा अदलिया, पुलिस व सिविल इंतजामिया के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब पर जस्टिस संजीव कुमार ने अलविदाई खुतबा पेश किया और चीफ जस्टिस के बेमिसाल जुडिशल कैरियर और कायदाना सलाहियतों को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर तमाम जज साहिबान, वकला और दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग जम्मू का एक रोजा कन्वेंशन आज जम्मू में विंग की सदर एडवोकेट शमीमा फिरदौस की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तारीखी इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पिछले डेढ़ बरस के दौरान समाज के हर एक तबके की बहबूद के लिए काम किया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि तालीम, समाजी इंसाफ, दीही तरक्की, बिजली, पानी, ज़िरात और दीगर शोबों में मुस्बत बदलाव लाने के लिए हुकूमत खातिरख्वाह इकदाम कर रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जे एम शाहीन की क्यादत वाले एक वफद ने आज चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के साथ श्रीनगर में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को दरपेश कई तरक्या चैलेंजों और मसाइल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वह लोगों की राहत रसानी के लिए हर तरह के इकदाम करें। खलीफा सोम हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक के सिलसिले में आसारी शरीफ शहरी कैलाशपोरा में 4 जून को एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिस दौरान नमाज जोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबरा मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी वाज फरमाएंगे। इसके अलावा वहां नमाज पंजगाना के बाद मोएपा के आजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाएगी। दरियासना वादी के बुलंदपाया वली कामिल हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक उनके आस्थान आलिया वाका नौशहरा श्रीनगर में 5 और 6 जून को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आस्थान आलिया पर खदमातुल मुअज्जमात, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजालिस मुनक्कद होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने आज आस्थान आलिया ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर हाजिरी दी और उर्स के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में कल दोपहर 2 बजे मारूफ ब्रॉडकास्टर, अदीब और शायर डॉक्टर सतीश विमल के साथ मीट द एमिनेंट राइटर उनवान के तहत एक मुलाकात का एहतमाम किया है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा बरादरी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कहा है कि इस मरहले पर TET मुनक्कद करने से असातिज़ा के मफादात को जक पहुंच सकती है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग ने आज आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: RET एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ है पार्लियामेंट थ्रू, तो इसमें TET का मामला भी आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में TET इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2019 में। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया, इस एक्ट को अप टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल जो तब थी जो गवर्नमेंट्स थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट्स हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है। ये जो नए रिक्रूटमेंट होंगे जो 2019 से आगे रिक्रूटमेंट होंगे जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको TET उनके लिए मैंडेटरी अगर आप रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पहले किसी सिस्टम के जरिए आए हुए हैं उन पे ये लागू करना ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है उनके साथ।
0: इस मामले पर एक सीनियर और स्टेट अवार्ड याफ्ता उस्ताद जावेद जवाद ने कहा,
2: टीचर्स के हवाले से अगर हम देखें जो एक्ट है अगर देखा जाए कि इसके बहुत से मजबूत पहलू भी हैं। पहली बात यह है कि इसमें जो मजबूत पहलू मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, हम इस वक्त 21st सेंचुरी में हैं, तो इसमें हमें क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी है कि क्वालिटी टीचर्स हों। टेट के जरिए उनकी जो टीचर्स की है उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है या उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसी तरह दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास इस वक्त हैं तो इनका एनकाउंटर करने के लिए इसके टीचर इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अगर टीचर इस पे मेहनत करें, इस पे इसको संजीदगी से लें तो इम्प्रूवमेंट आने के बहुत सारे चांसेस हैं। एक कम्पिटेटिव जहन तैयार होगा जिससे बच्चों को फायदा मिलेगा।
0: वुलर मानसवल डेवलपमेंट अथॉरिटी

0: ने आज सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट श्रीनगर के इश्तराक से नागहानी आफात से निपटने की तैयारियों, लोगों के तहफ़ से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर अथॉरिटी के CEO डॉक्टर एहसानुल हक चश्ती ने इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:38 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: अमीन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के 51 रोज मुकम्मल हो गए हैं और इस दौरान 100 मुनशात फरोश गिरफ्तार किए गए और 341 किलोग्राम मुनशात के अलावा 200 करोड़ रुपए के असासे जब्त या मुनहदम किए गए हैं। मुनशात की स्मगलिंग और नार्को टेरर के खिलाफ पिछले 30 वर्षों में ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन करार दिया जा सकता है। 11 अप्रैल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए शुरू किए गए अभियान में मरकज के जारी इंतजाम इलाके में मुनशियात के पूरे निजाम को निशाना बनाया गया है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 11 अप्रैल से 29 मई तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 930 FIR दर्ज किए और मुनशियात से मुतलिक जराइम में 1018 अफराद को गिरफ्तार किया। इस मुद्दत के दौरान पुलिस ने 341 किलोग्राम मुनशियात जब्त की जिसमें 120 करोड़ रुपए की 12 किलो हेरोइन के अलावा साइकोट्रॉपिक गोलियों के 23,752 यूनिट भी शामिल हैं। 55 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुनशियात के नेटवर्क्स के खिलाफ पुलिस ने 63.93 करोड़ रुपए मालियत की 89 गैर मनकूला जायदादें जब्त की और 19.77 करोड़ रुपए की मालियत की 63 जायदादों को मिसमार कर दिया जिसकी मजमूई मालियत 83 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुनशियात से मुंसलिक असासों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू खित्ते के 10 अजला और वादी कश्मीर के 7 अजला में पदयात्रा की क्यादत की जिसमें 3 से 4 लाख लोगों ने शिरकत की है। इन तकरीबात के दौरान जम्मू और श्रीनगर में सबसे ज्यादा लोग देखने में आए। ये इस बात की अक्कासी है कि लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई फिक्रमंद हैं और वो किसी भी तरह इस लानत का तोड़ करने और इसके मावनीन और मददगारों के खिलाफ अवामी तहरीक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। 50 रोज की मुहिम की खास बात नौजवानों की कसी तादाद का सामने आना है और खवातीन हजारों की तादाद में इस मुहिम का हिस्सा बनी है जिससे ये तहरीक एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अवामी सतह पर पूरे अजम के साथ मुनशियात मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बनने से यकीनी तौर पर मुनशियात के फैलाव के दबाव पर काबू पाने में मदद मिल सकती है जो आगे आने वाली नस्ल के लिए सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम में 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
4: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वारी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। समीन खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहर चारसदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस को कत्ल किया गया। मौलाना मोहम्मद इदरीस को एक मशहूर आलम दीन की हैसियत से पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल थी। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से वाबस्ता मोहम्मद इदरीस का ताल्लुक यूं तो पेशावर से था, मगर पिछले दो दिनों में ज़राए अब्लाग से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ इतलात फराहम कर रहे हैं। अलबत्ता एक इतला पर सब लोग मुत्तफिक नज़र आए कि मरहूम मौलाना जमीयत उलमाए इस्लाम के सबसे बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान ग्रुप से ताल्लुक रखते थे और ये कि आज मरहूम मौलाना 64 साल की उम्र वाले थे। मौलाना इदरीस के कत्ल के खिलाफ न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े कस्बों में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे कई शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तरंगज़े कस्बे में मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया, जहां मुजाहरीन पर लाठीचार्ज किया गया जिसमें 20 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के कई छोटे बड़े शहरों में भी इस कत्ल से मुतलिक एहतजाज की खबरें वसूल हुईं, क्योंकि अफगानिस्तान में मौलाना के शागिर्दों की तादाद हज़ारों में कही जाती है।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से। बात हो रही है पाकिस्तान की। समीन बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के एक जत्थे ने फारान मुश्की रोड पर काफिले की सूरत में गुजर रहे फौजियों पर एक खौफनाक हमला करके 8 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इतलात के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी के एक आला कमांडर, जिसका काम इश्तियाक बलोच कमानी बताया गया, ने काफले पर एक जदीद तर्ज का मार्टर गोला फेंका, जिसने फौजी काफले की एक से ज्यादा गाड़ियों को तलपट करके मुतअद्दिद फौजियों को गंभीर हालत में जख्मी कर दिया। उल्टी हो गई फौजी गाड़ियों से फौजी अभी बाहर आने की कोशिश ही कर रहे थे कि बलोच हथियारबंद जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पाकिस्तानी फौजी मौके पर ही दम तोड़ बैठे और मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में दो दो महाजों पर लड़ाई का सामना है। हालांकि भारत का पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी पाकिस्तान बलोच की बिगड़ती सूरत हाल के लिए भारत पर इल्जाम आयद करता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने एक अस्करी महाज खोला है, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने दूसरा महाज खोला है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान का मानना है पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतें गैर इस्लामी हुकूमतें हैं, इसलिए पूरे मुल्क में हुकूमती सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंककर इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करना, जो बिल्कुल अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत के तर्ज पर होगी। यूं पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जंगजू वक्तन फवक्तन पाकिस्तानी फौजियों पर यलगार करके उन्हें काफ़ी जानी नुकसान से दो चार करते हैं। दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद जवान भी आए रोज पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते रहे हैं। बलोच कौम परस्त लीडरों का मानना है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं है। बलोचिस्तान की अस्करी तारीख इस बात की शाहिद है कि पिछले 77 साल में बलोचिस्तान सूबे में शाजो नादिर ही अमन रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि कभी कभी पाकिस्तानी फौज का पलड़ा भारी रहता है तो पाकिस्तान बलोच

प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज़। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। रात के 8:30 हो रहे हैं। आप पेश हैं खेलों से मुतालिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
1: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टाइटल का दिफा करने में कामयाब। जी हां, करीबन 2 महीने तक जारी रहने वाले आईपीएल 2026 का कल यानी इतवार को अख्तिताम हुआ। आरसीबी अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब रही। आरसीबी को अपना पहला टाइटल हासिल करने के लिए करीबन 18 साल का इंतजार करना पड़ा था, तहम अब इसने आईपीएल के 2 खिताब यकबाद दीगरे हासिल किए। करीबन 1,10,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल शाम खेले गए फाइनल में आरसीबी ने मकामी फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस को बआसानी 5 विकेटों से हराकर अपने टाइटल का कामयाब दिफा किया। चंद बरसों के दौरान गुजरात टाइटंस आईपीएल की मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है। इसके पेश नज़र उम्मीद थी कि गुजरात टाइटंस इस बार आरसीबी को एक ज़बरदस्त टक्कर देने में कामयाब होगी। हालांकि चंद दिन कबल ही गुजरात टाइटंस को आरसीबी के हाथों प्लेऑफ 1 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक मरतबा फिर गुजरात टाइटंस बड़े मैच के प्रेशर को बेहतर अंदाज से हैंडल न कर पाई, जिसके बायस आरसीबी हर लम्हे मैच पर हावी नजर आई। टॉस जीतने के साथ ही आरसीबी ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का सिलसिला शुरू किया। वजह थी इसकी

0: बेहद फॉर्मिडेबल गेंदबाजी का यूनिट और एक ऐसे कामयाब कप्तान जो अपने फैसलों और खासकर नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। अगरचे T20 क्रिकेट खुसूसन IPL जैसी लीग्स बल्लेबाजी का खेल तसव्वुर किया जाता है, ताहम IPL 2026 में RCB की गेंदबाज बेशतर मौकों पर ये जितलाने में कामयाब हो गए कि स्विंग बेहतर लाइन लेंथ और विकेट की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बड़े से बड़े बल्लेबाज को मुश्किल में डालकर उसको काबू किया जा सकता है। इसका मुजाहरा इन्होंने कल खेले गए फाइनल मुकाबले के दौरान भी भरपूर अंदाज में किया। गुजरात टाइटंस के इनफॉर्म ओपनर साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस प्लान के साथ क्रीज पर उतरे थे कि हर तरह की गेंदबाजी पर अटैक करके पावर प्ले में एक बड़े स्कोर की बुनियाद डाली जा सके। इब्तदाई दो ओवरों में दोनों ने 18 रन भी स्कोर किए, तहम विकेट पर अच्छा खासा बाउंस देखकर RCB की गेंदबाज बहुत जल्द प्लान बी पर चले गए। इन्होंने लेंथ कम की और बाउंस का भरपूर फायदा उठाया। गुजरात टाइटन्स की विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। RCB के कंसिस्टेंट और फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइन यूनिट पर आगे नजर डालेंगे। पहले क्रिकेट और दीगर खेल सरगर्मियों पर एक नजर। खेल खबरों के साथ सुहेल निसार।
1: क्रिकेट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से हराकर लगातार दूसरी बार IPL टाइटल जीत लिया। मैच 90,000 तमाशाइयों ने देखा। चेज मास्टर विराट कोहली ने शानदार नाकाबिल शिकस्त 42 गेंदों में 75 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करके 8 विकेटों पर 155 रन बनाए। टॉप स्कोरर वॉशिंगटन सुंदर ने 27 गेंदों में 50 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन देकर 2, हेजलवुड ने 37 रन देकर 2 और रासिकुस्सलाम डार ने 27 रन देकर 3 विकेट। RCB ने हदफ 18 ओवर्स में अबूर कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन स्कोर किए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी ने हासिल किया। 15 साल सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में 237 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें 135 फोर्स और 72 सिक्स शामिल है। सूर्यवंशी ने 6 50s और 1 सेंचुरी स्कोर की। रावलपिंडी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 ODI सीरीज के पहले मैच में 5 विकेटों से हराया। डेब्यूटांट अराफात मिनहास ने 32 रन देकर 5 विकेटें ली। पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलियन टीम 45 ओवर्स में 200 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉट और मैथ रैनशा ने निस सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और गाजी गौरी ने निस सेंचुरियां बनाई। मैच विनिंग शॉट डेब्यूटांट अराफात मिरहास ने मारा, जिन्होंने छक्का मारकर 7 ओवर्स पहले पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कर दिया। अराफात पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू पर 5 विकेटें ली हो। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून को लाहौर में होगा। ब्रिस्टल में भारतीय खवातीन टीम को इंग्लैंड ने सीरीज के दूसरे T20 मैच में 26 रन से हराकर सीरीज लेवल कर दी है। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड ने 168 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए फ्रेया कैंप ने 13 गेंदों में 39 रन बनाए। आखिरी 2 ओवर्स में इंग्लैंड ने 39 रन स्कोर किए। भारत ने जवाब में 9 विकेटों पर 142 रन बनाए। एशियन गेम्स मेंस क्वालिफायर के पहले मैच में सिंगापुर में नेपाल ने 221 रन से चीन को हराया। T20 हिस्ट्री में मार्जिन के लिहाज से ये 7th हाईएस्ट विन है। रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के पास है, जिसने गैम्बिया को 2024 में 290 रन से हराया। नेपाल ने पहले बैटिंग करके 2 विकेटों पर 313 रन बनाए। T20s में हाई स्कोर जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के खिलाफ 2024 में 4 विकेटों पर 344 रन स्कोर किए थे। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। बैडमिंटन स्टार इंडियन मेंस डबल्स शटलर्स सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन जीतकर अपना लॉन्ग टाइटल ड्राफ्ट खत्म कर दिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 4 रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 3rd सीड फजार अल्फियान और शहीबुल फिक्री को 18-21, 21-17, 21-16 से शिकस्त दी। आखिरी बार कोई टाइटल दोनों ने 2024 में थाईलैंड में जीता था। ये दोनों का 9th करियर BWF वर्ल्ड टूर क्राउन है। सिंगापुर ओपन में डबल्स टाइटल जीतने वाले चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी पहला भारतीय डबल्स पेयर बन गया। टेनिस, 4th रैंक्ड कोको गॉफ ऑस्ट्रिया की 30th रैंक्ड अनस्ताजिया पोटापोवा से फ्रेंच ओपन के 3rd राउंड में हार गई। अमेरिकन कोको गॉफ दिफाई चैंपियन थी। नाओमी ओसाका ने 18 साल अमेरिकन

0: वह जोविक को 7-6, 6-7, 6-4 से हराया। मैच 3 घंटे तक जारी रहा। ये ओसाका के करियर का 100th ग्रैंड स्लैम मैच था। राउंड ऑफ 16 में अब ओसाका का मुकाबला टॉप रैंक्ड अरीना सबलेंका से होगा, जिन्होंने डारिया कसटकीना को 6-0, 7-5 से शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में ब्राजीलियन टीनेजर याओ फोंसेका के खिलाफ 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से हार गए। 24-time ग्रैंड स्लैम विनर जोकोविच को 5 घंटों के बाद आखिर मैच में शिकस्त हो गई। 39 साल थ्री-टाइम फ्रेंच ओपन विनर नोवाक जोकोविच की 2009 के बाद ये रोलांड गैरस पर अर्लीस्ट एग्जिट है। मार्टा कोस्ट्यूक ने इगा स्वियातेक को अपसेट शिकस्त से 2-4 किया। क्ले पर रवां सीजन में अनबीटन रहने वाली यूक्रेनियन 15 सीड पहली बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। कोस्ट्यूक ने 4-time चैंपियन इगा स्वियातेक को 7-5, 6-1 से हराया। फ्रेंच ओपन खवातीन मुकाबलों में अब फर्स्ट टाइम चैंपियन गारंटीड है। मेंस ड्रॉ में भी फर्स्ट टाइम चैंपियन गारंटीड है। रोमानियन वेटरन सोराना क्रिस्टी ने चाइनीज क्वालिफायर वैंग ज्यू को स्ट्रेट सेट्स में हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्रिस्टी ने 17 साल कबल रोलांड गैरस पर क्वार्टर फाइनल खेला था। फुटबॉल, पेरिस सेंट जर्मैन ने बुडापेस्ट में आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर यूरोपियन चैंपियंस लीग टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। आर्सेनल के लिए काय हैवर्ट्ज ने गोल स्कोर करके आर्सेनल को 1-0 से आगे कर दिया, लेकिन दूसरे हाफ में उस्मान डेम्बेले ने पेनल्टी से गोल स्कोर करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पेनल्टी शूटआउट में पेरिस सेंट जर्मैन के लिए गेनकालो रामोस, डिजायर डाओ, अशरफ हकीमी और बेराल्डो ने गोल स्कोर किए, जबकि नूनो मेंडेस के अटेम्प्ट को राया ने बचाया। आर्सेनल के लिए गोल्स विक्टर ग्योकेरेज, डेक्लान राइस और गैब्रियल मार्टिनेली ने स्कोर किए, जबकि एबरेची एज और गैब्रियल ने अपने चांसेस मिस किए। क्रिस्टल पैलेस ने लिप्ज़िग्स रेड बुल एरिना में रायो वेलाकैनो को 1-0 से हराकर पहली बार यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। विनर सेकेंड हाफ में जीन फिलिप मेटेटा ने स्कोर किया। ये फ्रेंच स्टार का 16th सीजन गोल था। ग्लासनर की कोचिंग में क्रिस्टल पैलेस ने 2.5 सालों में एफए कप, कम्युनिटी शील्ड और अब यूरोपियन ट्रॉफी जीत ली। इस क्लब ने इससे पहले कभी भी सिल्वरवेयर हासिल नहीं किया था। दोनों फाइनलिस्ट अपना पहला यूरोपियन फाइनल खेल रहे थे। 38 साल फुटबॉल आइकॉन लियोनल मेसी रिकॉर्ड 6th बार आलमी कप में अर्जेंटीना की नुमाइंदगी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। मेसी टीम की कप्तानी करेंगे। रेनिंग चैंपियंस अर्जेंटीना के 17 मेंबर्स को रिटेन किया गया है, जो कि कतर वर्ल्ड कप का हिस्सा थे।
1: आरसीबी को दोबारा चैंपियन बनाने में इसके बॉलिंग यूनिट खुसूसन भुवनेश्वर कुमार का अहम किरदार रहा। भुवनेश्वर कुमार पावर प्लेज में मुसलसल विकेटें लेते रहे। इन्होंने इस सीजन के दौरान कुल मिलाकर 28 विकेटें हासिल की। बेहद एक्यूरेसी और वॉबल सीम की वजह से वो इस सीजन के दौरान बेहद मुख्तलिफ गेंदबाज नजर आए। क्रीज के इस्तेमाल, ट्रेजेक्टरी और मोमेंट में वो मुसलसल बदलाव लाते रहे, जिसकी वजह से वो किसी कदर प्रेडिक्टेबल न दिखाई दिए, बल्कि बल्लेबाज उनकी गेंदों को गेस करते ही रहे। अजीम सचिन तेंदुलकर ने चंद दिन कबल उनकी शानदार गेंदबाजी का जिक्र करते हुए कहा था कि पिछले सीजन के दौरान भुवनेश्वर कुमार लेंथी इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स डालते रहे हैं, तहम इस सीजन के दौरान उनकी गेंदबाजी में एक बड़ी वेरिएशन देखने को मिली है। अब वो वॉबल सीम के साथ मुसलसल विकेटों के बीच गेंदें डाल रहे हैं, जिसमें उन्होंने काफी महारत हासिल की है, जिसके बायस बल्लेबाज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आया गेंद आउट स्विंग होगी या इन स्विंग। तेंदुलकर ने कहा कि इस सीजन के दौरान उनके इस आर्ट की वजह से कई बड़े बल्लेबाज उनके सामने मुश्किल में नजर आए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस फन का सिलसिला फाइनल मुकाबले में भी जारी रखा। आरसीबी के पास एक और तजुर्बेकार इब्तदाई गेंदबाज जोश हेजलवुड मौजूद थे, जिनके पास दुनिया के मुख्तलिफ मैदानों और कंडीशंस पर गेंदबाजी करने का एक वसी तजुर्बा है। लाइन एंड लेंथ और स्विंग और इकॉनमी के एतबार से वो भी अपना एक अलग मकाम रखते हैं, जिसके बायस वो किसी भी तरह की कंडीशंस पर विकटें लेते रहे हैं। मौजूदा सीजन के दौरान इन्होंने भुवनेश्वर कुमार का दूसरे एंड से भरपूर साथ निभाया, जिसकी वजह से बेशतर मौकों पर अपोजिशन

0: पावर प्ले में ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। इन्होंने आईपीएल 2026 में 13 मुकाबले खेलकर 15 विकेटें हासिल की। आईपीएल 2026 में राशिद सलामडार अनकैप्ड गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाज भी रहे। दरअसल यश दयाल के बाहर हो जाने के बाद ही राशिद सलामडार को आरसीबी के प्लेइंग 11 में शामिल होने का मौका फराहम हुआ। हम अपने शुरुआती मुकाबलों के दौरान ही राशिद इस्लाम ने इस बात का इंदिया दिया कि वो किसी और खिलाड़ी की गेप फिल करने के बजाय टीम में अपनी जगह बनाने की सलाहियत रखते हैं। जब उन्होंने लीग मुकाबलों के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ महज 24 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उनकी इस शानदार गेंदबाजी के बायस एलएसजी इस मुकाबले में महज 146 रन ही बना सकी। जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 26 साल राशिद सलामडार को दरअसल मुंबई इंडियंस ने 2019 में 20 लाख रुपए के एवज खरीदा था। तहम आईपीएल में डेब्यू करने का मौका उन्हें करीबन 3 साल बाद 2022 में मिला। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें साइन किया, जबकि 2024 के सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ शामिल किया। लेकिन पिछले 6 वर्षों के दौरान उन्हें महज चंद ही मुकाबलों में खेलने का मौका फराहम किया गया। तहम आईपीएल 2026 में आरसीबी की थिंक टैंक और खुसूसन कप्तान राजत पाटीदार ने उन पर बेहद ट्रस्ट दिखाकर उन्हें न सिर्फ खेलने का भरपूर मौका फराहम किया, बल्कि उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि वो आरसीबी की गेंदबाजी के एक अहम रुकन हैं। राशिद सलामडार ने आरसीबी को किसी भी तरह मायूस नहीं किया, बल्कि हर मैच के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी दिखाई। ये सिलसिला प्लेऑफ्स में भी जारी रहा, जबकि फाइनल मुकाबले में वो भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और जैकब डफी से एक कदम आगे रहे। इस मुकाबले में इन्होंने महज 27 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को आउट किया। राशिद सलाम की बेहद डिसिप्लिन के साथ जेन्युइन वेरिएशंस का इस्तेमाल, शार्प यॉर्कर और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरीज के बारे में अब कई एक तजियाकार जरूर बात कर रहे हैं। आईपीएल 2026 में राशिद सलाम पर एतमाद करके उन्हें बेहतर मौका फराहम किया गया और इन्होंने आरसीबी को चैंपियन बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया, जबकि आकिब नबी पर दिल्ली कैपिटल्स और कौमी टीम के सिलेक्टर्स कोई भी एतमाद दिखाने में नाकाम रहे। आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: आप खेलों से मुतलिक प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम के मेज़बान थे एजाज नाज़की। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न

0: मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप

0: से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों महत्वपूर्ण

0: गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और

0: इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। रात के 9 बज चुके हैं।

0: आप गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इक्तसादी शराकत दायरी के माहदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज़ आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की

0: रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिस्री ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जाम माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम हसूलियाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि USFDA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या UKMHRA से मंजूर शुदा भारत की जेनरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिरखा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। LPG सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक LPG घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में ₹42 का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर ₹3,113.50 का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला PM किसान स्कीम का आगाज़ है जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है।

0: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: मुख्तलिफ जराए के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ करते हुए इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
2: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
3: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इम्तिहान की मनसूखी के बाद पहले ही मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रही है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि तलाक के सिलसिले में डिक्रीज जारी करना लोक अदालतों और ज़िला लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि शादी को मनसूख करने का इख्तियार पूरी तरह से फैमिली कोर्ट्स के पास है। एक खातून की जानिब से उन्नाव की ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA के साल 2018 के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्त की समाअत के दौरान अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह बात कही। अर्जीगुजार का इल्ज़ाम था कि उसके शौहर ने सेटलमेंट रिकॉर्ड को DLSA के सामने तलाक डिक्री के तौर पर पेश किया और इसे दोबारा शादी करने की बुनियाद बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज इलाकाई पार्टनरों के साथ तावुन को फ़रोग देने की अहमियत की तौसीक की है ताकि एक आज़ाद, खुले, पुरम, मुस्तहकम और खुशहाल भारत बहरुल काहल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वुजराए दिफा मुजाकिरात के दौरान दोनों मुल्कों ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और खित्ते में बिला रुकावट तिजारत के लिए अपनी मजबूत हिमायत और बैनुल अक्वामी कानून के मुताबिक समंदर के दीगर कानूनी इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने की। एक बयान में वजारत दिफा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने समंदरी सरहद की सिक्योरिटी के बाहमी तावुन में पेशरफ्त और समंदरी सरहद की सिक्योरिटी इश्तराक के मुश्तरक लाहे अमल को कतई शक्ल देने के मामलों पर तबादला ख्याल किया। वजरा ने ऐलान किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दिफाई सनती शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अगले कदम के तौर पर दिफाई आर्टिकल और दिफाई सर्विसेज की शिकों के मुतालिक एक मफाहमत नामे की तैयारी शुरू करेंगे। दोनों वजीर सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के नए शोबों में मुस्तकबिल की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक में तआवुन को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मगरबी बंगाल काबीना में 35 नए वजीरों की शमूलियत के साथ आज तौसी की गई। इस सिलसिले में कोलकाता में लोकभवन में आज हलफबरदारी की तकरीब मुनद हुई। गवर्नर RN रवि ने वजरा की कौंसिल में शामिल होने वाले नए अरकान को अहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर अला शुभेंदु अधिकारी समेत दीगर सियासी लीडरों के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। आज काबिनी वजरा के तौर पर हलफ लेने वाली शख्सियात में स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय, शंकर घोष और दीगर शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने दो कानून साजों संदीपान साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों, अहम मीटिंगों से गैर हाजिर रहने और पार्टी क़यादत के मुतालिक नुक्ताचीनी करने वाले अवामी बयान देने के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। साल 2026 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में टीएमसी की शिकस्त के

0: बाद अंदरूनी खल्फशार के दौरान ये फैसला सामने आया है। मलेशिया बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र पर मबनी पाबंदियां आयद करने वाला नया मुल्क बन गया है। आज से नाफिज होने वाले नए जाब्तों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी और प्लेटफॉर्म्स को उम्र की तस्दीक से मुतालिक निज़ाम और बच्चों की तहफ़ुज़ की खसूसियात पर अमल करना होगा। इन इकदामात का मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले मशमूलात, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन डिज़ाइन की लत लग जाने से महफूज रखना है। वो कंपनियां जो इस जाब्ते पर अमल आवरी नहीं करेंगी उन्हें 1 करोड़ रिंगिट तक के जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने सोशल मीडिया तक बच्चों की रसाई पर पाबंदियों को मुतारिफ कराया है, जबकि ब्राज़ील ने वालिदैन की सख्त तरीन निगहदाश्त और उम्र की तस्दीक से मुतालिक इकदामात पर अमल शुरू कर दिया है। भारत की सनअती पैदावार में अप्रैल 2025 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 4.9% की तरक्की हुई है। ये तरक्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्दा कारकर्दगी की वजह से हुई। आदाद व शुमार और प्रोग्राम पर अमलावरी की वजारत ने बताया कि यह आदाद व शुमार सनअती पैदावार के नजरसानी शुदा इशारे IIP सीरीज़ पर मबनी है, जिसका बुनियादी साल 2022-23 है। इसमें कहा गया है कि इस माह के दौरान 6.2% तरक्की रिकॉर्ड की गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ आंधी की सूरत हाल के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने वस्ती कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लाइंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकत दायरी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनअती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज़ आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: इसे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम यूजात 68.8 मीटर तो एफ एम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रोज संज 9:30 बजे पेश कोशु ड्रामा बबला लिंदम, तहरीर अशोक काक।

0: 1, 2, 3, action!
1: Kero sir!
0: Hukum, my dear superstar, hero, hero, allow!
1: Zulfan, फिर से कंगा करने की इजाजत दे दो।
0: दोजी, दोजी, my dear superstar, कंगनी ये क्या करें? कि न मेरे पास तीसी कमी बासान।
1: कमी ही कमी है। दापसा, आशे करन लोक पगा सिक्रीनस बैठना। मेकअप वराइट पसंद।
0: You are absolutely right, sir. तवाई ते करो ताई बड़ियाँ बड़ियाँ superstar नाक में दम।
1: त्रुकुट हसा उसम भुवन करा। तपान अशम अशी खतर ते थैजे आटे डूना
0: ता छसा शाक्या मेरे हीरो हीरा लाल बुचिस यासा श्री देवी सी दिए तुई शार जित्रे हना नैवे पात करियो घंटास खंडास रेस्ट
1: श्री देवी सुकस गई श्री देवी आई डोंट नो हु शी इज मे वन ता अशी डायरेक्टर साहब यस हो लड़की छ ना यु को छ यस मे ई थली थली बुछान छ आर बरचो चश्मा
0: जी जनाब जी कैटरीना यान फिल्म में साइड हीरोइन
1: ओह ओके कैटरीना दमसा डायरेक्टर साहब सकर कम कैटरीना निमोने हीरोइन तो श्री देवी थवन साइड हीरोइन
0: एज यू लाइक सर
1: चलो ठीक छ दीव सिक्योरिटी इम करन याद फिलहाल नीव तुई चटान सिंगस सीन मेन मतलब छ मेनिस यारस जुल्फकारस
0: ओके सर
2: हे कोत गय असुस पिर छ ना मेन बुझत माय चल ये शहर त्रवित नकाय थजस वाले मे सई खोंचल गी करिन गय पादर सुसिंदस आसस मज अथ त्रावन बुझ दिल कही का
0: काट गुड शॉट सर
1: आई एम रेडी सर डायरेक्टर साहब विद कैटरीना
0: आर यू रेडी
1: या
0: ओके गोइंग फॉर द टेक रोल कैमरा एक्शन गुड शॉट सर
1: हे मोकलेकाचे वठन पॉलिश करित वने कराब कैटरीना पन्नी सुविधा कथ दर्जन पोश चने छेन पता चु कसा टट छकनी
3: कसा इज है रणबीर कपूरस रानी मुखर्जी छे
1: हाय हे केह रोवई छे काल पगा छ आसा आख किस पाम दिवान उश कुहु नाव हत हे दुमे मोहब्बत आई गो नूरी त बेई फारूक शेखुन
3: तिलवान पोज खांदर करे त करकच मे इथे कन प्यार जहमा कर हम टकराव तिलस्मा कर हम तार तार धमकी मध्य हम मालूम भाग जाओ
1: नहीं कभी नहीं चनी दरी है करे फकत प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार दुमय अग्रेसियत दिल च पबज चाक दिखना चनी सूरत है उशक साइति
3: यह छु म्याने हीरो हीरो लाल से प्यार पूरे विश्वास तब खोसान छस कैसे है मेनिस पिताई जी अस्वोन अगर है ऐसी जोरी जुदाई कर रख तेले
1: तेले क्या तेले है दिम्ब सर सी दुनिया स्नार आग लगा दूंगा सारे जहां को जला के राख कर दूंगा मैं चने छेन पाई सच एक म्याने दिल दुबराई चाने मुखाई निम्ब गबर सिंगा सोच पंग तो ये मोल चौन कोस कोकर गई है फकत वनी चुम्या Do you love me?
3: Truly, मेरी सरफरोश पोज रात चुम्नी चेन दोस्त न करार जुदाई चाने मंशन फकत पछत बोश लगा तो चस फोरी चोकल ताम नंगलावान
1: बुद्धि दपान से क्या छे फुटबॉल बनियमुस दपे म्याने खोत बटर छु गोमुत
3: से क्या छु गोमुत
1: मे छु मोले मशोमुत बाती थी म झमना बोखनी थवान दप सुचु सुलान तो मुसाफिरन दिवान
3: हां तिल कतिस कालस रोजक सु विंसेंट
1: बसाई रेतस खंड अस्त बस
3: अच्छा ना भाई कहते इलाज
1: तुम्हें वाद भाई लगी है बलाई इलाज है छु मगर चाहिए हटे
3: लगी है बलाई भाई दमे से पनुन जो ने वालो मैं क्या चु करूं पकड़ती
1: घर गाच तो बबलाल असलाग बुचे तो दिस दम की दपोस हरगाने चु शोचे हीरो हीरा लाल सूद नेथर करक बुचे मैं जहर
3: ठीक छु दुनिया रही तेल दप में उन्हें मारन छु जहर खाना से वो मजबूर कैसे ही मैंने बाप जाना सा है जे जरूर बदला
1: ना ही बलेलग सहर नहीं खेज दे मैं छु मंजूर अच्छी गशन जोरी

Samin, tu esu ye kashur drama bozan Babla Lindam tahrir Ashoka. Medium 268.8 meter aur FM 103.5 megahertz par ye Akashvani Srinagar ki awaz hai. Shab ke 10 baj chuke hain. Ab samapt karein program Geetu Bari Kahani. आज आप नासिर जमीर की कहानी सुनेंगे. जी हाँ, आज आप नासिर जमीर की कहानी सुनेंगे. ख्वाब का बाकी हिस्सा कहानी पेश करेंगे रशीद निजामी.

0: गीतों भरी कहानी। एक और गीतों भरी कहानी के साथ मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी।
1: आज आप नासिर जमीर की लिखी कहानी सुनेंगे, ख्वाब का बाकी हिस्सा। खुशियों के पल कितने मुख्तसर और बेमानी होते हैं, इस बात का एहसास मुझे हो ही गया। कल शाम तक मैं कितनी खुश थी, फिर सारी खुशियों के आईने में हैरत और परेशानी का बाल आ गया। अरे, मैंने तो अपना तारुफ कराया ही नहीं। मेरा नाम काशिफा है, मशहूर राइटर कमाल साहब की बेटी। असल में मुझे अपना पूरा नाम कहना चाहिए, डॉक्टर काशिफा, क्योंकि अब नाम के साथ प्रोफेशन और डिग्रियों के अलकाब साथ जोड़ना फैशन हो गया है। मेरी MBBS की ट्रेनिंग कल ही खत्म हो गई। ये ट्रेनिंग मैंने घर से दूर दूसरे शहर के मेडिकल कॉलेज में मुकम्मल की। लगभग पहले 6 महीने मैं हॉस्टल में रही, लेकिन जब मेरी दोस्ती और ज्यादा गहरी अपनी बैचमेट और हम उम्र माहीन से हुई, तो मुझे वो अपने घर ले आई। फिर हम दोनों उसके घर से ही इकट्ठे कॉलेज आते रहे। माहीन के घर जाने

से मेरा अकेलापन बहुत हद तक कम हुआ। माहीन की मम्मी शहनाज आंटी और उसके पापा शमीम अंकल मेरा काफी ख्याल रखते, खासकर शहनाज आंटी, वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा ख्याल रखती और मुझे इस बात पर काफी हैरत भी होती। वो मुझसे अक्सर कहा करती, तुम मेरी बेटी हो, एक नन्ही परी।

बहरहाल मेरा शौक और मेहनत रंग ला ही चुके, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और वो मैं बन ही गई। आगे का इरादा एमएस करने का है, क्योंकि पापा कहते हैं तिब में सिर्फ जराही का इल्म ही अमली इल्म का सबूत है, बाकी सारा तिब कयास पर मबनी है। हालांकि पापा ने कभी भी मुझे किसी बात को लेकर फोर्स नहीं किया। मेरा मानना है मेरे पापा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। मेरी तमाम जिंदगी में मैं अगर किसी से मुतासिर हूं तो वो सिर्फ उन्हीं से हूं। वो मेरे आइडियल हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं या फिर मशहूर राइटर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उनमें एक अच्छे बाप की तमाम खसूसियात मौजूद पाई। अगर देखा जाए तो मम्मा और उनके मिजाज में आसमान जमीन का फर्क है। मम्मा काफी गुस्से वाली और चिड़चिड़ी हैं, जबकि पापा एकदम शांत स्वभाव के। यह अलग बात है कि पापा की आंखों में अजीब किस्म की गहराई और उदासी छाई रहती है, पर वो कभी किसी से न कोई शिकायत करते हैं और ना ही कभी किसी की बुराई। उनका ज्यादातर वक्त अपने स्टडी रूम में लिखने पढ़ने में गुजरता है। मैं जब छोटी थी तो मैं सोने से पहले हमेशा पापा से जिद कर बैठती कि वो मुझे कोई कहानी सुनाए, और पापा मुझे रोज

पर ताज्जुब की बात यह है कि पापा मुझे रोज एक ही कहानी सुनाते थे और कहते ये कहानी नहीं बल्कि एक ख्वाब है जो उन्होंने कभी देखा था। पापा मेरे बालों में उंगलियां फेरते और कहते सुनो काश, मैंने ख्वाब में एक बहुत बड़ा बाग देखा। उस बाग में बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल मौजूद हैं, यास्मीन, चमेली, गुलाब, गुले आफ्ताब और बहुत सारे अकसाम के फूल, रंग बिरंगे पीले, सफ़ेद, सुर्ख और दूसरे रंगों के फूल। उस बाग में मुझे एक बूढ़ा माली नजर आया जो अपने काम में मसरूफ था। वो उन फूलों की रखवाली कर रहा था, उन्हें पानी देता और उनकी निगहदाश्त भी करता। उस सारे बाग में उन सारे फूलों में से एक बेहद हसीन और ज़्यादा महकदार फूल मौजूद था। ये फूल सारे बाग में कुछ ज़्यादा नुमाया था और तमाम बाग का मरकज भी, जिसके ऊपर एक भौंरा मंडला रहा था। वो भौंरा उस फूल पर बिल्कुल ही फरेफ्ता था, फूल भी उस भौंरे को अपनी पलकों पर बिठाए हुए था।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियां
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: बूढ़ा माली उनका प्यार देखकर बेहद खुश नजर आ रहा था। वो उन्हें दुआएं दे रहा था, उनकी सलामती और खुशहाल मुस्तकबिल की दुआएं। फिर बाग के दरवाजे पर दस्तक हुई। यहां तक ख्वाब सुनते सुनते हमेशा मेरी आंख लग गई होती। बहुत दिनों तक बचपन में मैंने पापा का यही एक ख्वाब सुना। एक दिन मैंने इरादा किया कि आज मैं पूरा ख्वाब सुनकर ही रहूंगी, और अगर मेरी पलकें बोझल हो भी गईं तो मैं खुद को जगाती रहूंगी और सारा ख्वाब सुन लूंगी। और मैंने यही किया भी। जब पापा ख्वाब सुनाते सुनाते कहने लगे, फिर बाग के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कहकर जब पापा उठने लगे तो मैंने उन्हें आवाज दी, पापा पापा फिर क्या हुआ, बाग के दरवाजे पर कौन था? पापा पीछे मुड़े और ये देखकर हैरान हुए कि मैं अभी तक जाग रही हूं। वो थोड़े परेशान हुए और कहा, मैंने इतना ही ख्वाब देखा है, फिर मेरी आंख खुल गई, समझे? ये कहकर पापा मेरे कमरे से ऐसे बाहर निकल आए जैसे मुझसे खफा हो गए हों। उस रात के बाद पापा फिर कभी भी मेरे कमरे में न आए और ना ही कभी अपना ख्वाब सुनाया। मेरे अंदर उस अधूरे ख्वाब ने गहरा असर छोड़ा और यह हमेशा मेरे जहन दिल में महफूज रहा, जिसकी वजह से मैं अक्सर रातों को सो न सकी, सिर्फ चांद को तकती रहती।

ये कल रात ही की बात है। हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। माहीन खुद तो गई, मुझे भी पार्टी में शरीक होने के लिए इसरार किया, लेकिन मैंने शहनाज आंटी और शमीम अंकल के पास ही रुकना पसंद किया। मैं वैसे भी घर जाने की खुशी से चूर थी, अपनी ज़िंदगी का एम मुकम्मल होने पर पुरमसर्रत थी।

मगर चमड़े में लिपटी किताब माली की ओर फेंक दी और यूं फूल और भंवरे को हमेशा के लिए जुदा कर गया। कल रात मैं जब पापा के सुनाए हुए ख्वाब का बाकी हिस्सा शहनाज आंटी की जबान से सुन रही थी तो मैं हैरानगी और तजुब के पहाड़ों तले दबी जा रही थी। पापा के देखे ख्वाब का बाकी हिस्सा शहनाज आंटी कैसे कैसे आखिर कैसे सुना रही थी। ख्वाब सुनाते सुनाते शहनाज आंटी की आंखें काफी सुर्ख थी और मैं नमक पानी भी तैर रहा था। जब वो जाने लगी तो न जाने कैसे मैं जुरत करके पूछ ही बैठी, आंटी वो किताब कौन सी थी। शहनाज आंटी मेरे करीब आई, मेरे माथे पर बोसा किया और कहा, बेटी माली ने जब चमड़े में लिपटी हुई किताब खोली तो उस पर साफ लिखा था तकदीर। शहनाज आंटी अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से जल्दी जल्दी बाहर चली आई।

आप प्रोग्राम सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। आज आपने नासिर ज़मीर की लिखी कहानी सुनी, ख्वाब का बाकी हिस्सा। प्रोग्राम के मेज़बान थे रशीद निज़ामी।

मेरी नजर लग ना जाए, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो मुझे अपने दिल में छुपा लो।

आप मुकेश की आवाज़ में ये नगमा सुन रहे थे। फिल्म प्यार का सागर। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11 बज रहे हैं। चंद लम्हों के बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेज़ी में खबरें सुनेंगे। खबरों का ज़रा सा इंतज़ार फरमाइए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

0: दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata,

0: चाहे है रूरल वेमेन फोक को, खास करके उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
1: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहां पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आमतौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था. और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
0: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े. शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए. इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं. अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया. और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई. लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में. बहुत सारे इलाकों में अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ

0: where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing, because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary, and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it, and then also being able to sustain it and being able to repay loans. And then, because the Mudra loan, as you can see, is of three stages: the Shishu, then Kishore, and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number of percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ke baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़

0: तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है. ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए. जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है. और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं. वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में. ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है. तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है. कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है. और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर. ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं. और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं. उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है. तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है. इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं. विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी.
1: जी.
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं. हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक. वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है. राइट. थैंक यू सो वेरी मच शुभमा अदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक. थैंक यू सो वेरी मच.
0: थैंक यू.
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है AIR @NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसर नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सौदागर।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात करेंगे रात की। जी हाँ, रात जैसे जैसे ढलती जाती है और धीमी हवा में जब खामोशी उतरती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर सांस में एक अनकही दास्तां छिपी होती है और हर धड़कन किसी अनजाने अदृश्य संगीत से जुड़ी होती है। और यही वो पल होता है जब मन खुद से बातें करने लगता है। बाहर की हलचल थम जाती है और भीतर की आवाजें खुद को बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जब हर इंसान अपने सबसे करीब होता है, खुद को महसूस कर सकता है, खुद को समझने की कोशिश करता है और जीवन से जुड़ी सच्चाई को बहुत करीब से जान लेता है। अगला गीत

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

ये जो रात की खामोशी होती है ना, जिसे हम कभी कभी कहते कहते अकेलेपन का नाम देते हैं, डर का नाम देते हैं, भय का नाम देते हैं, तो कभी कभी ये रात की खामोशी, ये सन्नाटा हमारे लिए एक सुंदर साथ भी बन जाता है। उसकी गोद में बैठकर हम अपने दुखों को गिनते हैं, अपनी तकलीफों को गिनते हैं, अपने संघर्षों को गिनते हैं, और फिर पाते हैं कि हर संघर्ष के पीछे, हर दुख के पीछे, हर तकलीफ के पीछे एक सीख छिपी होती है। हर आंसू किसी अनकहे साहस की कहानी होती है, और यही खामोशी हमें मजबूत करती जाती है। हम समझते हैं कि टूटना किसी भी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि हर टूटन से एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी रची जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे के बाद ही उजाले का जन्म होता है, और हर थकान के बाद एक सुकून भरी नींद आती है, और यही हम सबके जीवन का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है, सबसे सुंदर रहस्य है, और हम इसे समझना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं। जिंदगी की परिभाषा जिन शब्दों में लिखना चाहें उस शब्द में लिख सकते हैं, जिंदगी ठीक वैसे ही नजर आने लगेगी। पर लिखते वक्त में हमेशा याद रखें कि कहानी चाहे जैसी भी रही हो, कहानी का अंत

कैसा बनाना है ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात का ये शांत पहर, धीरे धीरे बहती हवा, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, उसमें यादों की खुशबू घुली होती है। कभी बचपन की हंसी, कभी जवानी की बेचैनी और कभी बुढ़ापे की थकान। हर सांस में एक कहानी छिपी होती है कहीं ना कहीं, जो हमें बताती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि महसूस करके जीने का नाम है। जीवन में जितने भी पल गुजर रहे हैं ना, उन सबको महसूस करते जाइए। हर कहानी के पीछे हर पल एक नई सीख देकर जाता है। जरूरत होती है उसे दिल से महसूस करने की। और अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अगर कुछ सुनाई देता है तो वो होती है दिल की आवाज, और ये दिल की आवाज सन्नाटे में सबसे तेज सबसे ऊंची सुनाई देती है, और वो सुनाई देकर उसकी धक धक धक धक धक धक हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो सब कुछ होता है ना, ये हमारा खुद के साथ संवाद होता है, और ये संवाद दुनिया का सबसे बेहतरीन संवाद होता है। जब हम अकेले में खामोशी में खुद से बातें करते हैं, और यही संवाद जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कहां है, तो वो हमें भीतर से रोशन कर देता है, बताता है कि सच्चा सुख जो है वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर की शांति में है। यही वो पल होता है जब हम खुद को पाना सीखने लग जाते हैं, खुद से बातें करना सीखने लग जाते हैं, और इसी क्रम में हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल कहां बैठकर हमारा इंतजार कर रही है। अगला गीत, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो आज आप पहला गीत सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अभिमान। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी लगता है कि तन्हाई बिल्कुल एक दर्पण की जैसी होती है। तन्हाई में बैठकर हम अपना असली चेहरा देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारा सामना हमारे उस व्यक्तित्व से होता है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, जिसमें हमारी कमजोरी होती है, हमारा डर होता है और हमारी ताकत भी होती है। और यही तन्हाई, यही अकेलापन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, किसी कमजोरी के कारण अगर खुद से भाग रहे हैं तो भागना संभव नहीं है। खुद को अपना लेना, चाहे हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा साहस है। और यही साहस हमें आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को अर्थ देता है, हौसला देता है। तो खुद को अपनाना सीखिए। हम जो हैं, हम इस दुनिया का सबसे बेहतर क्रिएचर हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

किसी ने कहा कि यादें अक्सर आती हैं और चुपचाप लौट जाती हैं, पर यादें जो होती हैं ना, वो चुपचाप लौटती हैं या नहीं लौटती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है। पर यादें हमें उन पलों में ले जाती हैं जहां हंसी थी और हंसी के साथ थोड़े से आंसू भी थे, पर अनगिनत अधूरी बातें थी। यादों ने ही सिखाया कि हर याद एक पुल का काम करती है जो हमें अतीत से जोड़ती है, और ये पुल अतीत से जोड़कर हमें सुकून देता है, पर कभी कभी वो हमें थोड़ा बेचैन भी कर देता है। लेकिन हर याद हमें ये सिखा कर जाती है कि बीता हुआ समय हमारे भीतर जीवित रहकर प्रदान करता रहता है। आप सुन रहे हैं रात सुरमई।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे 3 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाय की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म सच्चा झूठा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

उसकी मुस्कान जैसे रात की ठंडी हवा का झोंका, जो दिल की सारी थकान चुरा ले जाए और हर पल को खूबसूरत बना दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लहू के दो रंग से। इंतजार भी कितना प्यारा होता है जब यकीन हो कि कोई हमें याद करके मुस्कुरा रहा होगा। हर बीतती रात फिर उम्मीद बन जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हम राही। कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि रात हो या दिन, हर ख्याल उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर आकर ठहर जाता है।

कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए, कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए होती है, जहां एहसास ज्यादा सुनाई दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, दिल की खामोश पुकार से जोड़ा जाया करते हैं, जैसे हमारा रिश्ता है आपसे गीतों के साथ।

रात की ठंडी हवाओं में जब किसी का ख्याल महकने लगे तो हर वादी मोहब्बत का गीत गुनगुनाने लगती है। और इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा, और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व

0: एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of prevention.

गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजकुमार से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा का। फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतकार आनंद बख्शी।

और अभी आपने गीत सुना फिल्म अंधा कानून से, और इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक किशोर कुमार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दुल्हन वही चुपिया मन भाई से हेमलता की आवाज में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

और अब समय कह रहा है कि आप से अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। भजन है को अपनी आवाज से सजाया है भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी ने। आनंद लीजिए इस भजन का और जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान

0: दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ है। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act, East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural civilization.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

ये बहती हवाएं जैसे संदेश दे रही हैं कि नई सुबह उम्मीदों का उत्सव है। आइए इस ताजगी को अपने दिल में बसाकर पूरे दिन को मुस्कान और ऊर्जा से भर दें।